FM बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, और समाचारों के ठीक बाद यानी 6:05 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट

0: पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा भाग 10। सुबह 7 से भूलिए बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। आठ बजकर 15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेली इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और 1 चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनेगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनेगा मुझे कुछ कहना है फोबिया से कैसे बचे। 4 हेलो फरमाइश और 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा 7 से। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर

अंतर्गत इनसे मिलिए में आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन जान बची, लेखन विष्णु दत्त गौड़ का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 195।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव ना होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: भजन के आज कौन से रंगों से हम सबको सराबोर करेंगे? हमें जहाँ तक याद आ रहा है एक भजन, अगर आप कहें तो उसके बारे में अगर आप बताएं।
2: कौन सा आपको याद आ रहा है?
1: इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल अच्छा से निकले।
2: बहुत सुंदर भजन है,
1: इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: जी हाँ, ये भजन बहुत साल पहले मैंने इंदुबेन धानक से सुना था, जो मुंबई में ही रहती थी, फिर देवलाली शिफ्ट हो गई थी। तो वो इस भजन को बिल्कुल आंख बंद करके तन्मयता से रोते रोते गाती थी, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी इसमें। तो वो भजन मैंने भी गाना शुरू कर दिया और जो इसे सुनते हैं वो सच में द्रवित हो जाते हैं। भजन इतना अच्छा है, सुनाता हूँ
1: जी। बिल्कुल।

भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं और ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर लगा। आपके भजन में अनूप जी, कला पक्ष और भाव पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए भाव पक्ष और कला पक्ष को।
1: कला पक्ष जो है वो संगीत है और भाव पक्ष जो है वो कविता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम, नाद द्वितीय। जो कविता है वो सामने है, संगीत उसके पीछे है। यदि हम यूं ही आलाप लेते रहें तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन वही आलाप हम शब्दों के साथ लें तो उसका असर हो जाता है
0: जी।
1: ठुमक चलत रामचंद्र अगर गाएंगे तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर सिर्फ आलाप में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा। इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो हमारा भाव पक्ष है। शब्दों के माध्यम से हम भाव प्रस्तुत करते हैं और जो संगीत की निपुणता है उससे हम कला पक्ष को उजागर करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलके लोगों तक पहुंचते हैं तो उसका असर स्वर्गीय होता है।
0: अनूप जी, बड़ी बढ़िया बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। और अब
1: हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला की ये थी 10वीं कड़ी। और अगली कड़ी के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर। सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जानी माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगा

कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिएगा बस थोड़ा सा इंतजार।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुबह का तारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उषा मंगेशकर के आवाज में ये गीत। गीतकार हैं नूर लखनवी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

कोला अंजन भाभी ने जो घूंघट खोला तो आंख में पड़ा।

0: अरे तेरी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, ट्रेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें थी। बोल साहिल लुधियानवी ने लिखे थे और धुन ST परमन ने बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शबाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और नौशाद ने इस गीत की

0: नास्तिक फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी प्रदीप की और संगीत निर्देशन सी रामचंद्र का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर।

21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: बूट पॉलिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थीं। बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और धुन शंकर जयकिशन ने बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस बहुत थोड़ा सा इंतजार।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

तुम जाओ तो प्यार आ जाए, ये गीत आप सुन रहे थे सखी रॉबिन फिल्म से, और मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना है। इसे योगेश ने लिखा था और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: वल्लाह क्या बात है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत।

संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एक नजर किसी ने देखा, रंगोली फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे बोल। शैलेंद्र ने लिखे थे, तर्ज शंकर जयकिशन ने बनाई थी। ये बहुत ही सुरीली नगमे आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।

0: बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है तेरे नैनन का बहुत ही सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आप इससे सुन रहे थे। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार SN त्रिपाठी।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपने सुना शकील बदायूनी का लिखा गीत, संगीतकार थे नौशाद, फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में, अब सुनिए ये गाना। फिल्म टावर हाउस, आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: प्रोफेसर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना, और शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्ते।
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर

केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया।

0: आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को

0: रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
1: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। सवेरे के 8:30 हो रहे हैं और ये वक्त है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर का।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर में आज आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कामिनी और मेरे साथ है
1: रश्मि। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। और ये जो सूरज की किरणें हैं और ये जो महकी हवा है ये यही कहती है कि गिरो तो उठो, थमो तो चलो और हारो तो फिर से शुरुआत करो, क्योंकि हर नया सवेरा आपके लिए कई उम्मीदें लेकर आता है। तो आइए हम भी चलते हैं और दौड़ चलते हैं इस सफर में।

0: तो महकी हवा मुझे ले चल वहां। कहां ले चल रहे हैं? आज हम आपको ले चल रहे हैं ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे की ओर।
1: बिल्कुल, और ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे में शुरुआत होगी कुछ स्थानीय खबरों से। आईपीएल अपडेट के साथ साथ आज के दिन विशेष की बात करेंगे, और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसकी बात हम अपने श्रोताओं से करेंगे।
0: साथ ही आज हम राजीव गांधी जी को याद करेंगे, आज है उनकी पुण्यतिथि
1: जी। और इसी के साथ पर्यावरण संवाद के अंतर रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल की अवधारणा की बातचीत हमारे श्रोताओं से होगी, और साथ ही ट्रेवल टॉक के अंतर्गत आज हमारे श्रोताओं को लेकर चलेंगे अंबाजी।
0: बिल्कुल, और अवेयरनेस भी बहुत जरूरी रश्मि, तो इसलिए बच्चों में वित्तीय जागरूकता कैसे जगाएं और उन्हें कैसे समझाएं उसके बारे में हम बताएंगे। और साथ ही आज 9:10 के बाद में हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन सी कहानी डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारा है आज के पिटारे में हमारे साथ, लेकिन आज के दिन विशेष की बात करते हैं उससे जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल,
1: और वो होती है चाय। देखिए इसे कई लोग लत के रूप में कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये जिंदगी की खुराक है, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि मेहमान नवाजी के प्रतीक इस चाय का भी एक विशेष दिन होता है, वो है आज 21 मई का दिन।
0: बिल्कुल रश्मि, तो सुबह की जो शुरुआत होती है इन चाय की चुस्कियों के साथ होती है, और सदियों से सभी संस्कृति के लोग चाय का आनंद लेते आ रहे हैं, भले ही वो घर हो, ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक, गार्डन, जू, चौपाटी, नदी, तालाब, झील, किनारे, हंसी हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, ये चाय हमारा हर दिन और हर दिल अजीज होती है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पीने वाला और लोकप्रिय पेय पदार्थ है।
1: बिल्कुल, और देखिए इसके कई रूप इन दिनों में हम देखते हैं, कहीं लेमन टी है तो कहीं ग्रीन टी है, कहीं हर्बल टी है, केवल वो दूध वाली चाय अब चलन में नहीं रही है। बहुत सारी ऐसी टीज हैं जो कि आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं। और इस दिन की बात करें तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई ताकि चाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
0: रश्मि, चाय का एक बहुत ही लंबा और गौरवशाली इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति 5000 साल पहले चीन में हुई। चाय जल्द ही भारत, श्रीलंका सहित एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गई और अंततः यूरोप और अमेरिका में भी आ गई। और यह एक ऐसा पेय है जो विश्राम, सुकून और अच्छे स्वास्थ्य के भी जुड़ा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य लाभों के अलावा चाय एक जो है टिकाऊ फसल भी है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। और चाय की फसल को हम बताएं तो कि ज़्यादा पानी और खाद की आवश्यकता ही नहीं होती। चाय उत्पादन से रोजगार सृजित भी होता है और ग्रामीण समुदाय को सहायता भी मिलती है।
1: बिल्कुल, देखिए आपने रोजगार की बात की, तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि चाय उत्पादकों को और श्रमिकों को सम्मान देना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, विश्व भर में चाय की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। वैसे तो चाय के बहुत से उत्पादक देश हैं जिसमें भारत, चाइना, श्रीलंका, कीनिया सभी हैं, लेकिन भारत के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चाय जो है बहुत उत्पादित होती है।
0: तो इसीलिए आज के दिन 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम हमारे जीवन में चाय के महत्व के बारे में और जागरूकता बता सकें।
1: बिल्कुल, और इस दिन की हर साल एक विशेष थीम होती है। इस बार की थीम है फॉरेस्टिंग ग्रोथ एंड इंक्लूजन। ये थीम बताती है कि चाय के उद्योग में निष्पक्ष मजदूरी, छोटे किसानों का समर्थन करना और समावेशी विकास को केंद्रित करना।

0: और कामिनी अब बात करते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। कोलकाता ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी को चुना। मुंबई ने 147 रन बनाए 8 विकेट खोकर और मैच में कोलकाता को 148 रन का मामूली लक्ष्य मिला, जिसे उसने 6 विकेट खोकर 19 ओवर में ही प्राप्त कर लिया। मुंबई ने जो ये स्कोर बनाया वो इस सीजन में किसी भी टीम का बिना ऑल आउट हुए दूसरा सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले कोलकाता के खिलाफ दिल्ली ने 142 रन बनाए थे 8 विकेट खोकर। हालांकि मुंबई इंडियंस शुरुआती 6 ओवर में ही मुकाबले में पिछड़ गई थी, क्योंकि टॉप 4 बैट्समैन पावर प्ले के भीतर ही पवेलियन की ओर लौट गए। और जहां तक जिक्र करें ऑरेंज कैप का, तो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे अभी हैं वैभव सूर्यवंशी 579 रन के साथ। और अगर पर्पल कैप की बात करें तो बेंगलुरु के भुवनेश्वर के पास है 24 विकेट के साथ ये पर्पल कैप। और आज के मैच की बात की जाए तो आज 7:30 बजे मैच होने वाला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। अब देखते हैं ये मुकाबला क्या रन लेकर आता है।
1: तो रश्मि, तो ये था हमारा आईपीएल अपडेट।

0: तो रश्मित, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज जो दिन विशेष है उसके बारे में बात करेंगे। आज है 21 मई, यानी आज के दिन हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। यह दिन हमें उन निर्दोष नागरिकों की याद दिलाता है जिन्होंने आतंकी विभीषिका झेली है, और साथ ही उन वीर जवानों का भी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
1: बिल्कुल कामिनी, देखिए भारत हमेशा से शांति, करुणा और मानवता की भूमि रहा है, लेकिन जब भी आतंकवाद ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, नया भारत चुप नहीं रहा। आज का भारत न केवल आतंक का डटकर सामना करता है, बल्कि अब दुश्मन को उसके घर में जाकर घुसकर जवाब भी देता है। वैसे आज का दिन जो है हम याद कर रहे हैं राजीव गांधी जी को, उनकी पुण्यतिथि पर, और इसी दिन को याद करते हुए मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।
0: बिल्कुल, भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना, युवाओं को हिंसा और आतंकवाद से दूर रखना तथा आतंकवाद के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। और जैसा कि आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की एक आत्मघाती आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी, उनकी स्मृति और देश से आतंकवाद को मिटाने के संकल्प के रूप में इस दिन को चुना गया। और आधुनिक भारत के शिल्पी, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें आज हम याद करते हैं और नमन करते हैं। और आज़ाद भारत के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए, उसके लिए हमेशा भारत उनका ऋणी रहेगा।
1: बिल्कुल, देखिए, और भारत सरकार द्वारा 2026 में एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रमुख नीति के रूप में देखा जा रहा है। कामिनी, देखिए, प्रहार का मतलब होता है पी फॉर प्रिवेंशन, आर फॉर रिस्पॉन्स और ए फॉर एग्रीगेटिंग कैपेसिटी, यानी कुल क्षमता का उपयोग करना, एच फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ, और ए फॉर अगेन एटेन्यूएटिंग रेडिकलाइसिस, यानी कट्टरपंथ को कम करना, और इसके बाद के ए का मतलब होता है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित करना, और उसके बाद आर का मतलब होता है रिकवरी एंड रेजिलियंस, यानी पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। आज हमने भारत में देखा ही है कि चाहे वो उरी हमला हो या फिर पुलवामा की कायर जो घटना है वो हो, भारत ने जवाब में केवल बयान नहीं दिए बल्कि घर में घुसकर उन्हें मारा। उरी के शहीदों का बदला हमारी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया। तो अब हमारा भारत सिर्फ चुप नहीं रहता, लेकिन जवाब देना भी चाहता है, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ते।
0: बिल्कुल रश्मि, तो कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं, कुछ लोग दिलों पर। मरहूम राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वे जिंदा हैं।

0: तो ये तो थी हमारे देश की बात। और देश की जब बात करते हैं तब हम कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं। ऐसा लगता है कभी हम नॉर्थ में कई जगहों को देखते हैं, कभी साउथ में देखते हैं, ईस्ट और वेस्ट, मतलब कौन सा कोना ऐसा नहीं है जहाँ जाने का मन हमें कभी ना करे। तो अब हम कुछ ट्रैवल टॉक की बात कर लें। और आज यात्रा संवाद में हम किस पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, देखिए आज हम जाने वाले हैं अंबाजी टेम्पल, जो कि आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित ये तीर्थ राजस्थान और गुजरात की सीमा के निकट अरावली पर्वत माला की गोद में बसा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का हृदय भाग गिरा था, इसीलिए इससे 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। मंदिर में देवी की प्रतिमा नहीं है बल्कि श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जो इसकी सबसे अनूठी विशेषता मानी जाती है।
0: बिल्कुल रश्मि, तो गुजरात राजस्थान सीमा के पास अरावली पर्वतमाला की अरसूरी पहाड़ियों में स्थित अंबाजी शक्तिपीठ मंदिर, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। और यह मंदिर लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है जो माँ अंबा की पूजा अर्चना करने यहाँ आते हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि देवी सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था।
1: बिल्कुल, देखिए कि इसके मुख्य आकर्षणों की बात करें तो अंबाजी मंदिर में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सुबह और शाम की आरती का दृश्य भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इसी के साथ यहाँ है गब्बर पर्वत को माँ अंबा का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों और रोप वे दोनों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और शाम के समय यहाँ से अरावली की सुंदर वादियाँ बहुत ही मन मोह लेती हैं।
0: बिल्कुल रश्मित, अगर दर्शन करने की बात करें तो दर्शन करने का समय यहाँ पर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक है, दोपहर में 12 बजे से 4:15 बजे तक, और शाम को 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक यहाँ का दर्शन का समय है। और साथ ही यहाँ कैसे पहुँचें, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो यहाँ से मात्र 20 से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो अहमदाबाद से लगभग 190 किलोमीटर दूर और गुजरात और राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों के लिए यहाँ बसें और टैक्सियाँ आसानी से मिल जाते हैं। आप भले ही गुजरात से आ रहे हैं, आप भले ही राजस्थान से जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो आप कहीं ना कहीं से बहुत आसानी से, बहुत अच्छी रोड है, वहाँ चले जाएंगे। और पालनपुर से यह 65 किलोमीटर दूर है, माउंट आबू से 45 किलोमीटर, आबू रोड से 20 किलोमीटर, अहमदाबाद से 190 किलोमीटर और गुजरात राजस्थान सीमा के पास कड़ियादरा से 50 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है।
1: बिल्कुल, देखिए और आपने घूमने फिरने की बात की तो अक्टूबर से मार्च का जो समय होता है वो यहाँ के लिए सबसे अनुकूल होता है, क्योंकि मानसून में अरावली की हरियाली इस क्षेत्र की सुंदरता को और भी बढ़ाती है। साथ ही अगर आप यहाँ गई हों कामिनी, तो यहाँ पर मिलने वाला एक प्रसाद है जिसका नाम है मोहन थाल साथ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि अंबाजी की यात्रा केवल एक तीर्थ दर्शन नहीं है बल्कि श्रद्धा, प्रकृति और लोक संस्कृति का एक ऐसा अनुभव है

0: जहां मंदिर की घंटियों के साथ साथ अरावली की हवाएं भी भक्ति का संदेश सुनाती हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि आपने बताया कि यहां पर जो आकर्षण के जो केंद्र हैं उसके बारे में, जैसे कि एक तो यहां का स्वर्ण कलश जो है वो बहुत ही सुंदर है, साथ ही गब्बर लाइट एंड साउंड शो, गब्बर पहाड़ी पर शाम के समय होने वाला प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शन, ये देखने लायक होता है। तो आप भी ज़रूर जाएं और दर्शन करें इस माँ के दरबार का।

0: तो रश्मित, ये कार्यक्रम यूं ही आगे भी जारी रहेगा 9:10 पर, फिलहाल सवेरे के 9 बजने को है। तो ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से
1: जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोडमैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
2: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारी माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है, जब हम गांव की

0: छोटी छोटी बातों को गांव के लोगों का मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाएं।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार गांधीधाम भचाऊ भीलड़ी धनेरा रानीवाड़ा मारवाड़ भीनवाल मोदरान जालौर मोकलसर समदड़ी लूनी पाली मारवाड़ मारवाड़ जंक्शन ब्यावर अजमेर किशनगढ़ जयपुर जंक्शन जयपुर गांधीनगर स्टेशन बांदीकुई अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
2: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
3: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां AI तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव

0: टी वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने एक बार फिर से ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। 9:10 हो रहे हैं रश्मित, और अब क्यों ना एक खूबसूरत सा गीत हो जाए।
2: बिल्कुल।

0: शक है, तुम सच्ची बाकी सब झूठे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा ये कहानी।
1: सब झूठे तुम सच्ची। सुबह से ही वसुधा काम में लगी हुई थी। रसोई की खिड़की से आती हल्की धूप फर्श पर फैल रही थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, सिंक में रखे बर्तन धुल चुके थे और अब वे दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी थीं। इतने वर्षों से घर गृहस्थी संभालते संभालते उसके हाथ मशीन की तरह चलते थे, पर मन अब भी कहीं न कहीं थक जाता था। उधर घड़ी ने 10:30 बजाए और इधर मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर बेटी का नाम चमका तो उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। हाँ बोलो मेरी राजकुमारी, वसुधा लाड़ लड़ाते हुए बोली। उधर से तुरंत आवाज आई, माँ आप भी फोन करने वाली थी क्या? मैंने सोचा मैं ही पहले कर लूँ। वसुधा हल्का सा हंस पड़ी। कितनी बार कहा है इस समय फोन मत किया कर, तेरे पापा को खाना खिलाने का समय होता है। जानती हूँ माँ, बेटी ने ठुनकते हुए कहा, पर मेरे पास भी यही एक समय होता है। सुबह के सारे काम निपटा कर जब बैठती हूँ ना, तब आपकी बहुत याद आती है। वसुधा का मन भीग गया। शादी के बाद बेटी दूसरे शहर चली गई थी, पर उसकी आदतें अब भी बचपन जैसी ही थी। वे कुछ कहती इससे पहले बेटी की आवाज़ फ़ोन पर चहक उठी। अरे माँ, आज सुबह मैं साइकिलिंग के लिए नीचे जा रही थी ना, तब सामने वाले फ्लैट की आंटी मिल गई। कौन? विरल की माँ, कल्पना जी? हाँ माँ, उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। कल शाम उनकी सासू माँ बा पार्क में गिर गई थी। वसुधा का हाथ थम गया। उसने पूछा, अरे फिर क्या हुआ? बेटी अब पूरी तल्लीनता से बताने लगी, हर रोज की तरह बा शाम को पार्क में जाकर बैठी थी, धीरे धीरे चलती थी ना, अब शायद उठते समय संतुलन बिगड़ गया और वहीं गिर पड़ी। सोसाइटी वालों ने आंटी को फ़ोन किया। आंटी दौड़ती हुई नीचे आई, फिर लोगों की मदद से किसी तरह बा को ऊपर ले गई। बेचारा अकेला इंसान क्या क्या करे। उन दिनों वसुधा बेटी के पास उसके प्रसव हेतु गई हुई थी। इन 2 महीने में कल्पना जी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वसुधा के सामने अतीत जीवंत हो उठा। दुबली पतली कल्पना आंटी माथे पर पसीना एक हाथ से सास को संभालती हुई। वसुधा की आंखों में आंटी के हाथ में पहनी सोने की चूड़ियां चमक उठी, जिसकी नक्काशी से आकर्षित होकर उनसे पहली बातचीत आरंभ हुई थी। फिर जब भी आमने सामने होते वे आपस में बातें करने लगी थीं, एक दूसरे के हालचाल पूछने लगे। धीरे धीरे परिचय में अपनत्व बढ़ता गया था। शाम को उनके साथ अक्सर सोसाइटी के पार्क में घूमने निकल जाती थी। घूमने के साथ खूब बातचीत भी होती और कभी बेंच पर बैठकर पुराने गाने भी गा लिए जाते थे। प्रगाढ़ता बढ़ी तो दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। वे उन्हें कल्पना जी कहकर बुलाने लगी। कल्पना जी को याद करते हुए वसुधा ने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और रसोई में जाकर गैस चलाकर तवा चढ़ा दिया। अब कैसी हैं बा? वसुधा ने रोटी बेलते हुए पूछा। कमज़ोर तो बहुत हो गई है माँ, पर हिम्मत अभी भी है उनमें। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन शाम होते ही कहती हैं थोड़ी देर नीचे बैठा हूँ तो मन लग जाता है। कुछ क्षण दोनों चुप रही। वसुधा को बरसों पुरानी ये बातें याद आने लगी। कल्पना जी के दोनों बच्चे विरल और पारुल पढ़ने में तेज थे, पति अच्छी नौकरी पर थे, घर हमेशा जगमगाता रहता जैसे कोई उत्सव हो। आने जाने वालों की रेलम पेल से घर हंसता मुस्कुराता रहता। फिर धीरे धीरे सब बदलता चला गया। वसुधा ने पति की थाली लगाई और कमरे की ओर आवाज लगाई, अजी खाना लगा दिया है? इधर फोन पर बेटी फिर बोलने लगी, माँ सच बताऊं तो मुझे आंटी के लिए बहुत दुख होता है। अंकल तो वर्षों से डिप्रेशन के मरीज हैं, दवाइयों के बिना रह ही नहीं सकते। कभी दवा छूट जाए तो घर में अजीब व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, वसुधा ने लंबी सांस ली, बहुत सहा है उस औरत ने, और ऊपर से अब बाकी जिम्मेदारी। माँ अकेले इंसान की भी कोई सीमा होती है। रोटी पलटते पलटते वसुधा जैसे अतीत में खो गई। उसे याद आया जब वीरन

0: भाई पल पल कैसे कटेगा, हर पल, हर पल हमारा तो बहुत ही अच्छा कटता है क्योंकि हम होते हैं आकाशवाणी के साथ।
1: बिल्कुल, और जहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और आज हम स्पेशली एक कहानी लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल, और ये कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा, और कहानी का शीर्षक

0: इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तब फीस भरने के लिए कल्पना जी ने हाथों की उस सोने की चूड़ियों को छोड़ बाकी सब गहने बेच दिए थे। पारुल भी तब नौकरी करती थी, भाई की पढ़ाई में उसने तन मन से साथ दिया था। सबका कितना प्यार था, प्यारा था विरल। वसुधा धीरे से बोली, हाँ माँ, बेटी ने कहा। विरल भी मेहनती था, हमेशा कहता था कि अमेरिका जाकर बड़ा आदमी बनेगा। सबने उसका सपना अपना सपना बना लिया था। पारुल तो हर महीने अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर भाई की मदद करती थी। फिर विरल की शादी भी तो जल्दी कर दी थी। हाँ, अमेरिका जाने से पहले अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेटी अचानक रुक गई। लेकिन क्या? पता नहीं माँ, शादी के बाद न जाने क्या हुआ, शायद लेन देन को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी। बस तभी से उनकी बेटी पारुल बदल गई। पहले हर हफ्ता माँ बाप से मिलने आ जाती थी, सारे काम बेटे की तरह संभाल लेती थी, पर अब महीनों निकल जाते हैं, आती ही नहीं। वसुधा का मन कसीला हो उठा। अपने माँ बाप से इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। सच माँ, इस कठिन समय में भी नहीं आती, कभी कभार फोन कर लेती है बस। उधर तवे पर रोटी फूल रही थी और इधर दोनों के मन में रिश्तों की बुझती गर्माहट का धुआं भर रहा था। कुछ देर बाद बेटी फिर बोली, माँ मुझे तो कभी कभी लगता है रिश्ते अब बस नाम मात्र के रह गए हैं, सब अपने अपने मतलब में लगे हैं। वसुधा चुप रही। बेटी का स्वर भर्रा गया। उसने तलखी से पूछा, विरल विदेश में बैठा है, फोन करके हालचाल पूछ लेना ही क्या जिम्मेदारी पूरी करना है? और पारुल, जिसके बिना घर का एक काम नहीं होता था, वही अब ऐसे दूर हो गई जैसे उसका कभी इस घर से रिश्ता ही ना रहा हो। खून के रिश्ते ऐसे बेमानी कैसे हो जाते हैं माँ? वसुधा ने धीरे से कहा, हर रिश्ते की अपनी पीड़ा होती है बिटिया, बाहर से सब कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कल्पना आंटी, बेटी लगभग भावुक हो उठी, वे तो पूरी सच्चाई से सारे रिश्ते निभा रहे हैं, पति सास बेटा बहू सबके लिए लगी हुई हैं, कभी शिकायत तक नहीं करती। वसुधा के हाथ रुक गए। उसे याद आया पिछली बार जब कल्पना से मुलाकात हुई थी तो चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, फिर भी मुस्कुराकर बोली थी वे, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। वसुधा को उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द गहराई से महसूस हुआ था। उधर बेटी बोल रही थी, आप लोगों की पीढ़ी ने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाया माँ, आज की पीढ़ी शायद जल्दी थक जाती है या शायद रिश्तों का अर्थ बदल गया है, अब रिश्ते शायद लेन देन पर आधारित हो गए हैं। वसुधा कुछ कह पाती उससे पहले मोबाइल पर दूसरी कॉल आने लगी। उसने स्क्रीन देखी, बिटिया जरूरी फोन आ रहा है, बाद में बात करती हूँ, ठीक है माँ। फोन कट गया। रसोई में अचानक सन्नाटा भर गया। पति काम पर जा चुके थे। वसुधा धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। सामने तवे पर आखिरी रोटी पड़ी थी जो अब हल्की जलने लगी थी। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, सब झूठे तुम सच्ची। क्या सचमुच रिश्ते बदल गए हैं या लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं? वे सोचने लगी, क्या पारुल भी भीतर से टूटी होगी या फिर उसे लगा हो कि भाई के लिए सबने उसे नज़रअंदाज कर दिया, शायद उसके मन में कोई गांठ है जो समय पर खुल नहीं पाई। और विरल, विदेश की चमक में क्या सचमुच अपने पीछे छूटते लोगों की थकान दिखाई देती होगी उसे? पर इन सब के बीच कल्पना जी एक दीपक की तरह थी जिसकी लौ धीरे धीरे जलती है पर बुझती नहीं। वसुधा की आंखें नम हो उठी। उसे लगा दुनिया में सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग सचमुच रिश्तों को अपने हिस्से की आखिरी सांसों तक सच्चाई से निभाते हैं।
1: तुम सच्ची, बाकी सब झूठे। इस विषय पर अभी आपने सुनी ये कहानी डॉक्टर विमला भंडारी द्वारा। तो रश्मित, ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर।
2: बिल्कुल, और आज के हमारे चंक में होता है पर्यावरण संवाद, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं RRR की। भाई ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है RRR, हमारे श्रोताओं को बता दें। आज हम बात करने वाले हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की।

0: बिल्कुल इको टॉक, जहां हम 3R की अवधारणा को समझेंगे और यह एक कचरा प्रबंधन है और पर्यावरण संरक्षण का एक मूलभूत सिद्धांत है। और इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण को कम करना और कचरे को बढ़ने से रोकना है।
1: बिल्कुल, देखिए रिड्यूस का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं को कम उपयोग करना जिससे कचरा और प्रदूषण घटे, आवश्यकता अनुसार ही सामान खरीदना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और बिजली और पानी की बचत करना। रियूज का मतलब हुआ किसी वस्तु को फेंकने की बजाय दोबारा उसे उपयोग में लाना, कपड़े के थैले बार बार इस्तेमाल

0: बदलें, जैसे कि प्लास्टिक अखबार जिसे हम नए कागज़ में यूज़ में ले सकते हैं और प्लास्टिक से नई वस्तुएं बना सकते हैं। कचरा जो कि अलग अलग डिब्बों में हमें डालना चाहिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अपने क्षेत्र के पुनर्चक्रण का पालन करें। रीसाइक्लिंग से पहले सुनिश्चित करें कि आपका कचरा साफ हो। खाने के कचरे के लिए कंपोस्ट बिन का इस्तेमाल करें। पुनः उपयोग योग्य पेय की जो बोतलें होती हैं और कप होती हैं उन्हें यूज़ में लें। भंडारण के लिए कांच के जारों का उपयोग करें। खरीदारी करते समय अपने साथ दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग लेके जाएं, जैसे कि कपड़े के थैले होते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए, और जहाँ तक हम अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं कामिनी, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में वित्तीय जागरूकता की बात, क्योंकि इसमें उन्हें कम उम्र में ही पैसे की महत्ता, बचत और खर्च और सही आर्थिक निर्णयों की समझ देना बहुत ज़रूरी है, और आजकल के डिजिटल युग में भी ये समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल रश्मि, तो वित्तीय साक्षरता हर उम्र में महत्वपूर्ण होती है, और इसकी शुरुआत अगर हम बच्चों में बचपन से कर दें तो बच्चों को बचत, खर्च, बजट बनाने और जिम्मेदार निर्णय लेने के बारे में समझने और भविष्य में उनकी वित्तीय आदतें भी मजबूत हो सकेंगी।
1: बिल्कुल, देखिए, बच्चों को सिखाया जा सकता है कि बचत कैसे की जाती है। आप गुल्लक या सेविंग बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत और इच्छा में उनको डिफरेंस बताना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको ज़रूरी है और क्या आपकी इच्छा है। इसी के अनुसार बजट बनाइए, डिजिटल भुगतान की समझ दीजिए, और साथ ही मेहनत और पैसे का संबंध भी उन्हें बताना बहुत जरूरी है।
0: तो रश्मि, ये था आज का हमारा नमस्कार उदयपुर, और कार्यक्रम से हम इजाजत लेंगे, पर इसी वादे और इसी गीत के साथ कि फिर हम जरूर मिलेंगे। तो आज के कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त कामिनी,
1: और मैं थी रश्मि। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम आकाशवाणी के दोनों ही चैनल्स यानी मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ।
1: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

0: ए हवा जा उसको याद दिला दे कि कोई है जो उसे हर पल याद करता है। हवा की झोंकों में आज सिर्फ तेरा ही नाम है और मेरी हर सुबह अब बस तेरे ही नाम है। सो आज फिर से हवा के परों पर सवार होकर हम आ चुके हैं आप सभी से मुलाकात करने के लिए मॉर्निंग लोकल विंडो के जरिए। और आज आप सभी के साथ है रश्मि, स्वीकार कीजिएगा प्यार भरा नमस्कार।
1: आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर, मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी, जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी, जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है। और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: ये है गुड मॉर्निंग लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.

तो बिल्कुल हवाओं के परों पर सवार होकर हम आ चुके हैं आप सभी से मिलने गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम के साथ। और आज की मॉर्निंग लोकल विंडो में क्या कुछ होगा खास जानते हैं। इस वक्त गुड मॉर्निंग लेक सिटी ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 10 बजे का वक्त रहेगा वो भूली दास्तां कार्यक्रम का, और 11 बजे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, जिसमें गीत चुनेंगे हम और आप अपनी पसंदगी की मोहर लगाएंगे उस पर व्हाट्सएप के जरिए।

शायराना सॉन्ग आप सुन रहे थे दावती इश्क फिन से। और अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम की। भाई मौसम तो यूं है कि गर्मी अपने चरम पर है। अगर बीते 24 घंटों के तापमान की बात करें उदयपुर, तो अधिकतम तापमान रहा 40.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस, और तापमान में और भी बढ़ोतरी होगी ये संभावना जताई जा रही है। वैसे हमारे शहर के लिए एक अच्छी बात यह है कि MBA हॉस्पिटल में 18 नए जम्बो कूलर लगाए गए हैं जो कि मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि ईवी वाहनों का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में शहर में 30 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन तो ऑलरेडी हैं, लेकिन पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 39 स्टेशन और भी लगाने की योजना बनाई गई है। तो ऐसे में हमारे पर्यावरण की बचत भी होगी और आपकी पेट्रोल की खपत भी कम होगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सो ये है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी। हमारे शहर में क्या कुछ खास हो रहा है उदयपुर जानते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से बागोर की हवेली स्थित ग्राफिक स्टूडियो में आयोजित 7 दिवसीय एचिंग और सेरीग्राफिक कार्यशाला शहर के कला जगत में नई ऊर्जा भर रही है। कार्यशाला में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के करीब 20 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रतिभागियों को प्रिंट मेकिंग की आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला का समय जो है वो सुबह 10 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रतिभागियों को विभिन्न तकनीकों का व्यवहारिक अभ्यास भी करवाया गया, साथ ही कई विद्यार्थियों ने पहली बार इस तरह की प्रिंट मेकिंग तकनीक सीखने का उत्साह जताया। और देखिए, इस तरह की छुट्टियों के इस अवसर पर इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं वो हमारे शहर में आई हैं, जो कि आपको बहुत सारी जानकारी दे रही हैं, बहुत सारी कलाएं सिखा रही हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर इन्हें सीखें। वैसे एचिंग जो होती है वो प्रिंट मेकिंग की पारंपरिक प्रक्रिया है, जिसमें एसिड की मदद से कॉपर और जिंक प्लेट पर डिजाइन उकेर कर उसे कागज पर प्रिंट किया जाता है। और सेरीग्राफी के अंतर्गत इसे स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहा जाता है, जिसमें जाली और स्टेंसिल्स की मदद से स्याही के कपड़े, कागज और अन्य सतहों पर स्थानांतरित किया जाता है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप भी जा सकते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है।

0: तोड़ना नहीं है।
1: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: सो गुड मॉर्निंग, लेक सिटी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम का आखिरी गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं बैंड बाजा बारात फिल्म से। वैसे आपको बता दें कि आज के गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम में हमने शामिल किए निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्मों से कुछ गीत। जी हां, आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे उन्होंने शुरुआत की चांदनी लम्हे और डर जैसी फिल्मों में अपने पिता के साथ सहायक निर्देशक के रूप में। आईना फिल्म में उन्होंने अपनी माँ के लिए उस फिल्म की पटकथा भी लिखी और उसके बाद तो हिट सुपरहिट फिल्मों की झड़ी ही लग गई। वैसे आज जिन फिल्मों के गीत हमने शामिल किए वो फिल्में थी वीर जारा, दावते इश्क, झूम बराबर झूम, लागा चुनरी में दाग और गुड मॉर्निंग लिक सिटी का ये आखिरी गीत आप सभी के लिए है बैंड बाजा बारात फिल्म से।

बिल्कुल, गुरुवार का दिन है और सुबह के 10:01 हो चुके हैं उदयपुर, और ये वक्त है कार्यक्रम वो भूली दास्ता का। वो भूली दास्ता, इस कार्यक्रम के जरिए आज आवाज देते हैं बॉलीवुड की भूली बिसरी गलियों से एक ऐसी बॉलीवुड हस्ती को, यानी एक ऐसे निर्माता निर्देशक को जिनके नाम पर दर्शक फिल्में देखने सिनेमा हॉल में जाया करते।

आज सदा दे रहे हैं एक ऐसे निर्माता निर्देशक को जिन्हें हिंदी सिनेमा का वट वृक्ष कहा जाता है। इनकी छाव में अनगिनत कलाकार फले और फूले।

बिल्कुल दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर। उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी ऐसी फिल्मों के फूल दिए हैं जिसकी महक आज भी बरकरार है। 14 अप्रैल सन 1921 में हुआ उनका जन्म झांसी में। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने बॉलीवुड को दिए बहुत सारे सितारे। आपको बता दें कि शशधर मुखर्जी उनके भाई रहे, जॉय मुखर्जी उनके भतीजे और रानी मुखर्जी, काजोल और तनीषा जैसी अभिनेत्रियां इसी परिवार ने बॉलीवुड को दी हैं। और इसी के साथ अब हमने अगर जिक्र जॉय मुखर्जी का किया है तो आइए अगला गीत सुनवाते हैं 1967 की फिल्म शागिर्द का। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर

तहलका मचा चुकी थी। बॉम्बे के मशहूर मराठा मंदिर में थिएटर में ये फिल्म एक साल से भी ज्यादा समय तक चली। इस फिल्म को निर्देशित किया सुबोध मुखर्जी ने। आप सुन रहे हैं शागिर्द फिल्म का गीत। इस फिल्म का निर्देशन रहा समीर गांगुली का और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सुबोध मुखर्जी ने।

0: नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा गुड्डू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: तो ये है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी और वो भोली दास्तां। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उदयपुर। आज हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी को, जो कि केवल एक निर्माता निर्देशक ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी भी रहे। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें जेल भेज दिया गया। 3 महीने तक वो जेल में रहे और फिर जब घर खर्च चलाने के लिए कोई जरिया नहीं बचा तो सुबोध मुखर्जी मुंबई चले आए, जहां पर इनके बड़े भाई शशधर मुखर्जी फिल्मिस्तान स्टूडियो का हिस्सा थे। सुबोध मुखर्जी ने भी फिल्में बनाना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म थी मुनीम जी, जो कि सुपरहिट साबित हुई, जिसमें देवानंद को खूब वाहवाही मिली। फिलहाल ये अगला गीत पेइंग गेस्ट फिल्म से है। इस फिल्म में भी अभिनय किया देवानंद साहब ने और उनके साथ नजर आती हैं अभिनेत्री नूतन।
5: निगाहें मस्ताना देख, समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ

किशोरदा और आशा जी का मस्ती भरा अंदाज पेइंग गेस्ट एफएम के लिए आप सुन रहे थे। देवानंद साहब को स्टार्टिंग में कामयाबी दिलाने का श्रेय सुबोध मुखर्जी को ही जाता है। देवानंद के साथ ही एक और हिट सुपरहिट फिल्म आई 1959 में, लव मैरिज। इस फिल्म का निर्देशन भी किया सुबोध मुखर्जी में और मुखर्जी ने, और इस फिल्म में देवानंद साहब के साथ नजर आती हैं माला सिन्हा। ये ऑल टाइम हिट सॉन्ग लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

0: वैसे देवानंद के साथ साथ शमी कपूर साहब के करियर की भी एक हिट सुपर हिट फिल्म रही सुबोध मुखर्जी के नाम। जी हाँ, ये फिल्म थी जंगली। इस फिल्म में शमी कपूर का मस्त मौला और जिंदा दिल अंदाज इसी फिल्म से वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। सायरा बानो की ये पहली फिल्म रही जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस फिल्म को निर्देशित किया, निर्मित किया सुबोध मुखर्जी ने। वैसे इस फिल्म में याहू शब्द काफी हिट सुपरहिट रहा। आप जानते हैं, जब ये गीत रिकॉर्ड किया जाना था तो सुबोध मुखर्जी चाहते थे कि याहू शब्द को रफ़ी साहब बहुत ही जोशीले अंदाज से गाएं, लेकिन फाइनली इस शब्द को रफ़ी साहब ने नहीं गाया बल्कि इसे गाया संगीतकार जय किशन ने, क्योंकि रफ़ी साहब को लगा कि वे इस आवाज़ के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं यही गीत फ्रॉम द मूवी जंगली।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

0: जंगली कहे।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वो भोली दास्तां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेडियो लेक सिटी से। आज इस प्रोग्राम में हमने शामिल किए हैं निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी की फिल्मों से कुछ गीत। कुछ और फिल्मों का जिक्र करें तो साल 1970 में आई फिल्म अभिनेत्री, जिसमें अभिनय किया शशि कपूर और हेमा मालिनी ने। और वैसे इस फिल्म की पहली पसंद थे जितेंद्र, लेकिन बाद में ये फिल्म आई शशि कपूर की झोली में। और हेमा मालिनी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और थोड़ा सा असहज महसूस करती थी शशि कपूर के सामने, क्योंकि शशि कपूर काफ़ी स्थापित और अनुभवी अभिनेता रहे, लेकिन शशि कपूर के मजाकिया अंदाज के कारण और उनकी हरकतों से उन्हें काफ़ी सहज महसूस होता। फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, इस बार आवाज़ें हैं किशोरदा और लता जी की आवाज़ में।
2: हंसो मत, बोलो

वाकई में हेमा मालिनी के लिए इस फिल्म की शूटिंग बड़ी ही कठिन रही क्योंकि उनके सामने शशि कपूर जैसे सीनियर अभिनेता थे। चलिए जब बात शशि कपूर की कर रहे हैं तो शशि कपूर के लिए सुबोध मुखर्जी ने कुल 3 फिल्मों का निर्माण किया। शर्मिली और अभिनेत्री फिल्म का गीत तो हम आपको सुनवा ही चुके हैं। अगली फिल्म है दीवानगी। इस फिल्म में शशि कपूर के साथ नजर आती हैं जीनत अमान।

और ये ज़माना सुबोध मुखर्जी को यूं ही फिल्म इंडस्ट्री की वट वृक्ष नहीं कहता, क्योंकि इनकी छाया के तले देवानंद साहब, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे अभिनेता फले और फूले। चलिए अगला जिक्र करते हैं 1964 की फिल्म अप्रैल फूल की। इस फिल्म को भी निर्मित और निर्देशित किया सुबोध मुखर्जी ने, और इस फिल्म में नज़र आते हैं विश्वजीत और सायरा बानो।

और हम भी मोहब्बत करते हैं इन फिल्मों से। सुबोध मुखर्जी एक ऐसे निर्माता निर्देशक थे जिनके नाम से दर्शक सिनेमा हॉल में आया करते। 1970 का दशक आते आते फिल्में उनकी फ्लॉप होने लगी और 1985 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उनकी आखिरी फिल्म रही उल्टा सीधा, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्टर उन्होंने ही किया। 1985 में आई ये फिल्म और इस फिल्म में नजर आते हैं राज बब्बर और रति अग्निहोत्री। ये फिल्म उल्टा सीधा।

तो दोस्तों, वो भूली दास्तां इस कार्यक्रम के जरिए आज हम तय कर रहे थे निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी की फिल्मों का सफर। 21 मई सन 2005 को वो इस फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह गए, एक वट वृक्ष के रूप में रहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत उनकी पहली फिल्म मुनीम जी से सुनवा रहे हैं। इस सफर को आपने तय किया रश्मीत के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। ये प्रोग्राम सुनिए हर गुरुवार की सुबह 11 बजे 101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर। इसमें गाने हमारे होंगे, लाइक्स आपके आएंगे जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचेंगे। गाने के बाद आपके नाम अनाउंस होंगे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जिन पर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर है 9462697568। तो प्रोग्राम का नाम तराने हमारे, व्हाट्सएप आपके, गुरुवार की सुबह 11 बजे रेडियो लेक सिटी पर।

सो ये है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी उदयपुर और अब सुबह के ठीक 11 बजने को हैं, सिर्फ 6 सेकंड रहे हैं। चलिए तो आज अब इस प्रोग्राम में तराने हमारे व्हाट्सएप आपके इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिन फिल्मों के गीत शामिल करेंगे, अगर आपको वो गीत पसंद आते हैं उदयपुर, तो 9462697568946269758 ये है हमारा फ़ोन नंबर, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहला गीत आज के दिन विशेष के उपलक्ष्य में आपको सुनाते हैं। जी हाँ, आज है विश्व चाय दिवस, तो चाय तो मिलने का बहाना है ही, तो चलिए करते हैं आप सभी से मुलाकात इस गीत के ज़रिए। ये है सौतन फिल्म का गीत, किशोरदा और लता जी की आवाज़ में। अगर आपको ये गीत पसंद आता है तो 9462697568 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।

भाई ये गीत सुनकर तो हमें भी चाय की तलब लगने लगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ नाम इस प्रोग्राम में पहले शामिल कर लें या फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर चाय पी आएंगे। वैसे सबसे पहले जो हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है वो है मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता का। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है सेक्टर 67 से मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का, यही नाम इन्होंने फिर से भेज डाले हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर 11 बजे से पहले ही आप किसी भी गीत में अपना नाम शामिल करने के लिए हमें कह चुके हैं तो वो व्हाट्सएप हम शामिल नहीं करेंगे, आपको फिर से व्हाट्सएप करना होगा। और अगर आप गीत के पहली लाइन के साथ अपने व्हाट्सएप भेजेंगे उदयपुर तो हमें अच्छा लगेगा कि जो गीत हम प्ले कर रहे हैं आप उन्हें ही पसंद कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया के साथ हम तक व्हाट्सएप पहुँचा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है गुरमीत सिंह, मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सएप पहुंचा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना का। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है अशोक साधवानी, देवीलाल चौधरी, मोहन चौधरी, कृष्णा जी, हितेश, गौरव, कपिल खिलानी, भरत तेली, आबिद खान पठान और सभी फ्रेंड्स जो हैं वो इस गीत को पसंद कर रहे हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया का, इन्होंने यही व्हाट्सएप फिर से भेजा है। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार अगर आपका व्हाट्सएप आपने भेज दिया है तो वो ज़रूर हम तक पहुंचेगा, आप निश्चिंत रहें। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा का। ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचता है PS नुहाकार, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहरकर का, मलकापुर के ये श्रोता हैं। और इससे पहले जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा वो नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पहुंचा। ये व्हाट्सएप हम तक आया है बाबूलाल जी, दिनेश टाक, मुकेश टाक, पुष्कर टाक, सूरजपोल रेगर कॉलोनी के श्रोता हैं और दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु जिंगर भूत महल के साइड के श्रोता हैं। सौतन फिल्म के गीत को पसंद किया है हफीज़ा मिठाई, नफीज़ा फकरू, यूनुस असगर, सकीना पटवा, जाकिया गोरिया, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर की, ये हमारे श्रोता हैं। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर से सोनू और पिंकी का, सौतन फिल्म के ही गीत को उन्होंने पसंद किया है, जी हाँ। और अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है गुड मॉर्निंग के साथ व्हाट्सएप करते हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना का। और अब इस गीत को पसंद किया है MP कॉलेज कुम्हारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्पा रानी पूर्बिया, उन्हें गीत पसंद आया है मोती छोटा करजाली हाउस से, माधवलाल सिल्ली घर से और साथ ही कुम्हारों का भट्टा से प्रजापति जोनी कुल्लड़ वाले, उन्हें भी ये गीत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। ये अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है इसमें काफ़ी सारे नाम हैं तो चलिए हम शामिल कर लेते हैं। ये नाम है बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी रंगास्वामी, साधना रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, भानु प्रताप दास रंगास्वामी, महिमा भास्कर, चित्रांशी, शांति भाभी जी, कमला भाभी जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और पूरा खुबानी परिवार इस गीत को पसंद कर रहा है। और अब ये अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ये है तो लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित कुमावत, मीनाक्षी, कोमल खिरातीवाड़ा, रंगीला भेरू चौक से, शिवलाल जी कुमावत, छगन देवी कुमावत, राजकुमार मोहित चारभुजा मंदिर खिरातीवाड़ा के श्रोता हैं, विनोद जी कुमावत, नीलम कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी, कोमल कुमावत हिरणमगरी सेक्टर 5 के, किंजू कुमावत, शौर्य कार्तिक, दादाजी दादी जी हिरणमगरी सेक्टर 5 उदय पार्क के श्रोता हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक आया है संतोष खतूरिया जी का, यज्ञ सालवी दूध तलाई उदयपुर के ये श्रोता हैं। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है

सौतन फिल्म के लिए सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली के श्रोता हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी वडने रकोला से बलदेव दामोदर, अनुणा दामोदर, चंद्रपुर महाराज से मधुकर येले, कंचन येले, नीलेश येले, बुद्ध विहार बाबली से मंगेश पानबुड़े, भानुदास पानबुड़े, टेकड़ेवाड़ी नागपुर से सुशील येले और मनीषा येले, धन्यवाद। कुछ श्रोता तो हमें रोज व्हाट्सअप करते हैं, उनके नाम हमें वाकई में कविताओं जैसे याद हो चुके हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत सारा प्यार रेडियो लेक सिटी तक पहुँचाते हैं। ये अगला जो व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है प्रेम पूर्वक आदाब के साथ गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन का। जी बहुत शुक्रिया। आप ये ना लिखें कि किसी भी गीत में शामिल करें नाम, अगर आप उस फिल्म का नाम भी लिखकर भेज देंगे जिसका गीत हमने प्ले किया है तो हमें अच्छा लगेगा। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींडिया, नमन ढींडिया और अपार ढींडिया का हम तक व्हाट्सअप पहुंचा है। ये आता है व्हाट्सअप हम तक जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कांबड़े का, बहुत शुक्रिया। ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति, राजेंद्र प्रहलाद वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा का, बहुत शुक्रिया। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुँचता है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, ये ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं। इसके बाद का व्हाट्सएप आया है अंडार नाद घाट छत्तीसगढ़ से आखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा का। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ये है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। जय श्री कृष्णा के साथ हम तक व्हाट्सएप पहुंचता है उदयपुर सेक्टर 9 से हरीश जिंगर, मंजू जिंगर, जय जिंगर, माधवी जिंगर, छुटकी और किटू का, इन्हें गीत पसंद आ रहे हैं। साथ ही नसीराबाद महेंद्र डाबी, ममता डाबी, हनी गुना का भी हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है। ये अगला व्हाट्सएप आता है मीरानगर से ब्लॉक से मनोहर सिकलीगर, सरोज सिकलीगर, गणेश घाटी उदयपुर से हेमेंद्र सिकलीगर और विजेंद्र सिकलीगर का। चलिए नाम तो बहुत सारे हैं उदयपुर और हम सभी शामिल भी करेंगे। फिलहाल ये अगला गीत आप सभी का इंतज़ार कर रहा है, ये गीत है लावा फिल्म से। अगर आपको ये गीत पसंद आता है तो आप हमें 9462697568 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

चलिए, बहुत सारे व्हाट्सएप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं उदयपुर। तो ये अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है सौतन फिल्म को के गीत को पसंद करते हुए रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पवार, पिंकी, मनस्वी, चैतन्या और कार्तिकेय का प्रभात नगर हिरण बगरी सेक्टर 5 उदयपुर की श्रोता हैं। ये अगला व्हाट्सएप नमस्कार के साथ आता है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू का। आप सभी को बता दें कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम में जो गीत हमने शामिल किए हैं वो गीत आप पसंद करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का। यह अगला व्हाट्सएप आया है मालदा स्ट्रीट से मंजू सेन और अशोक जी सेन, राधा कृष्णा जी, सोनिया शेखर जी और सेन चिंकी, निर्मला जी, रेखा जी विजय नगर की भी श्रोता हैं। इसी के साथ ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है जिन्हें सौतन फिल्म का ही गीत पसंद आया। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर जी। चलिए नेक्स्ट व्हाट्सएप हम तक पहुँचता है, चलिए ओके, सौतन फिल्म के गीत को ही आपने पसंद किया है। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर के हमारे श्रोता हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस गीत को पसंद करने के लिए। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है अद्वेश शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा, मुकेश शर्मा, सनम, रोहित, अशोक, ब्रिजेश, प्रकाश, गायत्री, हीरालाल शर्मा, दिलमानी शर्मा, विलेज डुमरी, सिमरी, ब्लॉक दुमराव, डिस्ट्रिक्ट बक्सर, बिहार के श्रोता हैं। बहुत शुक्रिया। ये अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय का। आप फरमाइश बिल्कुल ना करें। ये अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है सौतन फिल्म को ही पसंद, गीत को ही पसंद करते हुए एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना का। ये अगला व्हाट्सएप हमें फिर से उस वही भेज डाला है सुखविंदर सिंह जोड़ा की पूरी फैमिली ने, बहुत शुक्रिया। अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है मीना सिलाई सेंटर साठडिया बाजार भिंडर से मीरा, मीना टेलर, रौनक, जतिन और यामिनी का। अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाणे, अर्चना ताई गुड़ाणे, हीरामन शिंदे जी का, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुड़ाणे का, बहुत शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। ये अगला व्हाट्सएप पहुंचा है हम तक अस्सलाम वालेकुम के साथ, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी फाजिल का पंजाब, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा।

वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक, समस्त खेड़ा परिवार इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है इसमें उन्होंने बड़ा सारा मैसेज कर डाला है जो तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपका नाम जो है वो शामिल करते हैं। अशोक प्रजापत, नरेश नाहोर, हीरालाल कुमावत, सभी के नाम आपने लिखे हैं और साथ ही आपने लिखे हैं 330 चितौड़ा हाउस से विश्वविद्यालय मार्ग, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितौड़ा, शारदा चितौड़ा, रॉबिन चितौड़ा, विकास चितौड़ा, भावेश चितौड़ा, सोनाली चितौड़ा, पुत्र वधू विनीता चितौड़ा, कृतिका चितौड़ा, दिया चितौड़ा, प्रियांश चितौड़ा, तनिष्का चितौड़ा, इन सभी का हम तक व्हाट्सएप पहुँचा है। और इसी के साथ व्हाट्सएप आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू का, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी डुमराव बिहार के श्रोता हैं और साथ ही सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। इसी के साथ ये जो अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, रोशन लाल सालवी, राजकुमारी सालवी, ललित जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैत्विक सालवी, पूरा सालवी परिवार, चौकीदार आवास, मीरा कॉलेज उदयपुर के श्रोता हैं। बोरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर, थाहिर लड्डू और सिराज हबीब का हम तक व्हाट्सएप पहुँचा है। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप हम तक आया है वो है, बहुत सारे नाम हम तक पहुँच गए हैं उदयपुर, तो ओके चलिए हम नेक्स्ट व्हाट्सएप शामिल कर लेते हैं। ये है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया का, स्टेशन रोड जमशेदपुर के श्रोता हैं। ये है हीरालाल चौधरी, पार्वती, गजेंद्र चौधरी, निर्मला चौधरी, पूर्वी, प्रेक्षा और मदरी उदयपुर के, मादड़ी उदयपुर के श्रोता हैं। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है, जितेंद्र मंजू मासी, पुष्पा मासी, चिराग मोनी, न्यू भोपालपुरा के श्रोता, निर्मला दीदी, मनीष जी, हेमंत जी, तारा माली, सोनिया माली, रोहित रमेश, न्यू भोपालपुरा के श्रोता, प्रदीप माली, रीना भाभी, डोली माली, न्यू भोपालपुरा के श्रोता, जमुनाबाई, रूपलाल जी माली, न्यू भोपालपुरा के श्रोता है, नन्ना मुन्ना युगो और मदन मंजू माहिर न्यू भोपालपुरा के ही श्रोता हैं। खमागणी के साथ ही आप बहुत सारे नाम भेज देते हैं उदयपुर, हम गीत कैसे सुनवाएंगे आपको, तो चलिए ये नाम हम शामिल कर लेते हैं। तुलसीराम जी चौहान सूरज पोल से, गजेंद्र सिंह सारंग देवोत, भविराज सिंह सारंग देवोत, बुरकिया खुद बोहेड़ा से, भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान, बोहेड़ा चौहानों की हवेली से, गोपाल चौहान ठोकर चौराहा उदयपुर से हैं, मनोज बागड़ी एडवोकेट, महेश बागड़ी आदर्श नगर पहाड़ा, विकास सिंह जयपुर से हैं, कुशाल बागड़ी मन बागड़ी सेक्टर नंबर 14 से हैं, ललित सिंह चौहान काकरवा, हेमेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी गोकुलपुरा आयर से हैं और उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा दक्षिणी आयर कलाल वाटी से हैं और इंद्र सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड दीपेश चौहान हाथीपोल के श्रोता हैं। चलिए इसके साथ और भी नाम आपने लिखे हैं, वो है मुकेश जी चौहान, बजरंगी भाई देबारी से, लाला भाई निमावत प्रतापनगर से, गोपाल भाई निमावत सुखेर से, राजू भाई खींची बादरी से, अंची निमावत देबारी से, कनिष्क चौहान सूरज पोल कालिका माता चौक से। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार आपका नाम शामिल हो जाए तो आप और नाम ना भेजिएगा और गीतों का आनंद आप लीजिए। अगला गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं आशा भोसले और रफी साहब की आवाज़ में, ये गीत है चंदन का पालना, फिल्म से अभिनेता धर्मेंद्र और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। पसंद आए तो व्हाट्सएप कीजिएगा।

रफ़ी साहब और आशा भोसले का चंचल सा अंदाज इस गीत में नज़र आता है। चलिए कुछ और व्हाट्सएप हम शामिल कर लेते हैं। ये है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और केथल हरियाणा से मधु नायक का हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है धन्यवाद के साथ। और इसी के साथ ही व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है नमस्कार के साथ मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा का ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान और मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ये है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का नमस्ते के साथ। ब्रजमोहन शर्मा, शारदा शर्मा, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, श्री जी विहार खेड़ा सर्कल सेक्टर 14 के श्रोता हैं। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी का, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी का, आपका भी शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है श्री गंगानगर राजस्थान से रामेश्वर जी, निरंजिया और सुमन दिव्या का, नूतन दिव्या, प्रेम करगवाल और प्रेम अग्रवाल हैं शायद, और शिव किशन और चंद्र का और आपका शामिल कर लिया है व्हाट्सएप हमने बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको लग रहा है ये श्रोता हैं बद्रुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद, मल्लू अंसारी बनारस के हमारे श्रोता हैं। ये जो व्हाट्सएप आया है ये है सलमा अटारी, हुजीमा अटारी, शुग्रा अटारी और संजीदा तबस्सुम, अलीशा कलकत्ता वाला फोर खारोल कॉलोनी के श्रोता हैं। ये हैं कुमारवाड़ा से ललित कुमार प्रजापत, अशोक कुमार, नामदेव, जाकिर हुसैन ये हमारे श्रोता हैं। इसी के साथ ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदा इरम कलीम और राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य थैंक्स के साथ पसंद किया है उन्होंने लावा फिल्म का गीत और साथ ही सौतन फिल्म के गीत को पसंद करते हैं नरेश दवे, रंजना दवे और अंशुल दवे, शुक्रिया। ये नेक्स्ट जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो लाल सिंह राठौर, ठिकाना खरका, भानावत, भागल, सलूम्बर, मेवाड़, उदयपुर राजस्थान के श्रोता हैं। इन्होंने यही व्हाट्सएप फिर से कर डाला है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सोनी और ये किसी गीत को पसंद कर रहे हैं। आपसे माफ़ी चाहेंगे कि ये प्रोग्राम तरहाने हमारे व्हाट्सएप आपके हैं, जो गीत हम प्ले कर रहे हैं आप उसी को पसंद कीजिए, फरमाइशी गीतों को हम शामिल नहीं करेंगे। अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचता है ग्राम ममना, ज़िला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के श्रोता है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, धन्यवाद के साथ, बहुत शुक्रिया।

ये अगला व्हाट्सअप चंदन का पालना फिल्म के गीत को पसंद किया है संजय शर्मा, गीता शर्मा, विकास, निकेश, निशा शर्मा, नोनिया मोहल्ला, विलेज वारन, तहसील जामिया जमीनिया, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, यूपी के श्रोता है। ठीक है, ये अगला जो व्हाट्सअप हम तक पहुंचा, ये पहुंचा है चेतक सर्कल से मुकेश झिंगर, रेणु झिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी, सहेलियों की बाड़ी से अजय झिंगर, प्रिंस झिंगर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स, आज़ाद नगर के श्रोता हैं। ये व्हाट्सअप आया मनीष टेलर और बाबूलाल धावाई का, सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर के श्रोता हैं। अशोक आनंद और मीनू नैनानी प्रभात नगर हिरणमगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं। ये अगला व्हाट्सअप आया है सौतन फिल्म के गीत को पसंद किया मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानू, इनाया टेलर, अक्सा इकरा, मस्जिद एरिया, मुस्तफ़ा कॉलोनी सलुम्बर के श्रोता हैं। और साथ ही मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, इनाया टेलर जी, इन्होंने फिर से हमें व्हाट्सएप भेजा, बहुत शुक्रिया। अगर आपने एक बार व्हाट्सएप भेज दिया उदयपुर तो हम ज़रूर से शामिल करेंगे, लेकिन बहुत सारे नाम एक साथ शामिल करते हैं तो गीत नहीं सुनवा पाते, इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। चलिए अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है वो है सत्येंद्र भावसर, ऋतु भावसर, राहुल भावसर, दामिनी भावसर, गला मंडी सीहोर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं, राजकुमार शर्मा, पुष्पा शर्मा, और इसी के साथ चंद्रशेखर भावसर, संगीता भावसर, कपिल भावसर, दामिनी भावसर, लविशा भावसर, तीन मोहली चोटा उदयपुर के श्रोता हैं। इसी के साथ मुकेश भावसर, पद्मावती भावसर, राहुल भावसर, दामिनी, हर्षल भावसर, कुशल भावसर, आकाश भावसर, निशा भावसर हमारे श्रोता हैं, ओम प्रकाश भावसर, मधु भावसर, निरंजन भावसर, प्राची भावसर, दीपेश भावसर, सुरभि नन्हा, नमन मोहाली चोटा उदयपुर के श्रोता हैं। ठीक है, सत्येंद्र भावसर, ऋतु भावसर, राहुल भावसर, दामिनी, बहुत सारे नाम आपने भेजे जा रहे हैं, राजकुमार शर्मा, पुष्पा शर्मा आपने भी व्हाट्सअप किया है और ये सभी नाम हमने शामिल कर लिए हैं। इसी के साथ ये जो व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है वो है हमारे श्रोता, ये हैं कमल और कौशल्या जी सुहालका, धारावती सुहालका, दर्शन और श्वेता सुहालका उदयपुर के श्रोता हैं, और इन्होंने भी पसंद किया है शायद मेरी शादी का। ओके, सौतन फिल्म का गीत आपको पसंद आया है, ये हमारे श्रोता है परमानंद जी कुमावत, भूपेंद्र जी मल्लारा और नरोत्तम गौड़ जी धानमंडी उदयपुर राजस्थान के श्रोता हैं, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप हम तक बहुत सारे पहुंच रहे हैं उदयपुर। इसी के साथ सफरुद्दीन अंसारी जो है आप कुछ कहना चाहते हैं, चलिए आपका नाम हमने शामिल कर लिया और आपका मैसेज हमने पढ़ लिया है, जो हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। इसी के साथ कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के श्रोता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांक्ष का। आप सभी का बहुत शुक्रिया, प्यार भरे नमस्कार के साथ। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगड़ा, दिल से शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। ये व्हाट्सअप आता है मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू का, मयंक साहू और जानकी साहू का। लावा फिल्म के गीत को पसंद किया है वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का, बहुत शुक्रिया। चलिए और व्हाट्सअप हम देख लेते हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप हम तक पहुँचे उदयपुर। ये जो व्हाट्सअप हम तक आया है उदयपुर वालियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी जी का, जगदीश चौक से सीमा वारी, नाहर सिंह वारी का, भावना रावत और नितिन रावत का, आपका भी शुक्रिया। ये जो व्हाट्सअप है ये हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला गीत प्ले करेंगे। ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं। और भी व्हाट्सअप हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, हम नाम ज़रूर लेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं उदयपुर, और उसके बाद आप सभी के लिए होगा शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में सांच को आँच नहीं इस फिल्म का गीत। इंतज़ार कीजिएगा इस ब्रेक के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: ये गीत है सांच को आज नहीं इस फिल्म से। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।

चलिए तो हमारी आंखों के सामने सितारों की तरह चमक उठे हैं ये व्हाट्सएप, और ये व्हाट्सएप हमें किया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का हम तक व्हाट्सएप आया है। सौतन फिल्म के लिए जो हम तक व्हाट्सएप पहुंचा वो है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूनी, प्रमोद कुमार डूनी और पुष्पेंद्र डूनी का। इसी के साथ ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह का। पद्मा टॉकीज नेपानगर की श्रोता हैं। नमस्कार के साथ हमसे हम तक व्हाट्सएप किया है मनोज राजानी ने, और वो चाहते हैं कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो चलिए आपका ये जो संदेश है हमारे अधिकारियों तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है कलानौर नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है आदाब के साथ, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी का तहे दिल से शुक्रिया के साथ। आपका भी शुक्रिया।

लक्ष्मी मार्ग अमल का काटा उदयपुर से राहुल शर्मा, योगेश शर्मा, योगी शर्मा और विक्रम शर्मा। इसी के साथ नमस्कार के साथ घंटा घर से हरीश सोनी, मांगीलाल जी, दीपक कुमावत, नरेश शिपाहुजा, सलीम भाई, नाहर सिंह, लाल जी सोनी, और ये गीत उन्हें पसंद आया, बहुत शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सअप हम तक पहुँचा है, ये है हमारे श्रोता मित्र नगर बीड़ शहर महाराष्ट्र से विकास बनसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे का, और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे का। बहुत शुक्रिया, बहुत ही साफ अक्षरों में आपने व्हाट्सअप किया है। इसके बाद परमानंद कुमावत, लाल जी, सभी साथी धारमंडी उदयपुर के श्रोता, तुलसीराम कुमावत, कांता कुमावत, तोसिका, रवि, महादेव मंदिर खेरातीवाड़ा के श्रोता, किशोर टेलर, जयंत राठौड़, मालदास सहरी, ये लिखा है आपने, शशांक कुमावत और कार्तिक मोहित, पल्लवी है शायद या पल्लू यूवी है कुमावत, और ये है हिरणमगरी सेक्टर 5 के श्रोता, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम तक व्हाट्सअप पहुंचा है रहमान कॉलोनी उदयपुर से मोहम्मद इदरीश, रुखसाना बानो मुस्तफ़ा का, और लावा फिल्म के लिए हमें व्हाट्सअप किया है रहमान कॉलोनी से अब्दुल सामद, फिरदीस बानो, मोहम्मद अरसलन और मोहम्मद रजा का, बहुत शुक्रिया। भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान का, सत्येन चौहान का, तरुणा चौहान का, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री, आप सभी को लावा फिल्म का गीत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। उसके बाद बड़ी जेठी फार्म हाउस से विनोद, उमा, अमित, सुमित, नम्रता, प्रथम, और मुंबई से वमिका और अनारिया ने लावा फिल्म के गीत को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ भीलू राणा कॉलोनी से सिमरन यादव और पिंकी यादव, बहुत शुक्रिया। ये अगला व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है जिसमें आपने शायद ही व्हाट्सअप डिलीट कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो व्हाट्सअप आया है रामपुरा से नारायण सेन, फिल्म लावा के गीत आपको पसंद आया, ओके। ये व्हाट्सअप आया है हम तक गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा का, बहुत शुक्रिया। ये व्हाट्सअप हम तक आया उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी बघेल, साहिल भारती बघेल और लगान पंडरिया छत्तीसगढ़, हमारे जो दूसरा गीत हमने प्ले किया था उदयपुर उसके लिए भी हम तक व्हाट्सअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है कि एक बार अगर आपका नाम शामिल हो जाए तो फिर आप गीतों का आनंद लीजिए। एमपी कॉलोनी से महेंद्र चावला, यश समृत गीत और दीपा चावला का, बहुत शुक्रिया। ये जो व्हाट्सअप आप तक पहुंचा है ये है शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक का हम तक व्हाट्सअप पहुंचा है गांव जाखोद से राजस्थान से, बहुत शुक्रिया। ये जो व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है गणेश नगर से महावीर जैन चित्तौड़ा का, बहुत शुक्रिया। शॉर्ट एंड स्वीट आपका मैसेज रहा। अगला व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। ये व्हाट्सअप हम तक पहुंचता है सविता पायल, पूनम पुनीत, सिद्धवेश, अदिति, सृष्टि, विनीता, सुनीता का भोपालपुरा के आई रोड से। अगला व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है नया गांव पाली से जगदीश दास रंगास्वामी, साधना भास्कर, चित्रांशी रंगास्वामी, पूरा भीमर परिवार हम तक व्हाट्सअप पहुँचाता है। और ये व्हाट्सअप पहुँचा है अम्बाजी से फरमाइश करते हैं लकी दास रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी और निकुंज और नक्श। अगले व्हाट्सअप में फरमाइश कर डाली है उदयपुर, फरमाइश बिल्कुल न कीजिए। ये व्हाट्सअप हम तक पहुंचा है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति का। चलिए और हम व्हाट्सअप देख लेते हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप हैं हमारे पास, तो चलिए कुछ और हमें शामिल करने ही होंगे। ये व्हाट्सअप हम तक पहुँचा है साँच को आज नहीं फिल्म के लिए तरुणा झमक पूर्विया, सोहन देवी पूर्विया, पूरा पूर्विया, लक्ष्मी लक्षराज पूर्विया, हाथीपोल उदयपुर के श्रोता हैं, बहुत शुक्रिया। ये हम तक आता है नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सफन भाई का, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये व्हाट्सअप आता है राजकुमारी और विपिन गोस्वामी का, चंदनवाड़ी प्रेमनगर के श्रोता हैं। इसी के साथ हम तक व्हाट्सअप पहुँचता है साँच को आज नहीं फिल्म के लिए आयुर्वेदिक चौराह से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान, पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत, नक्श रावत का, बहुत शुक्रिया। ये व्हाट्सअप पहुँचता बन बघेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा का, उरेटा ढूंढी लोहारा जिला बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभात तामुरिया, अजय तुषार, डॉली तामुरिया। एक और व्हाट्सअप हम शामिल कर लेते हैं, यह है नारवा इंद्रो का, जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी, गणेश चौक राता नाड़ा, जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी का। चलिए गीत तो बहुत से हमने सेलेक्ट किए थे लेकिन अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ये फिल्म है 90s हिट निश्चय फिल्म का गीत है उदयपुर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आएगा, अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में है, सुनिए और पसंद करते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए।

ओपी नैयर साहब की आखिरी फिल्मों में से ये फिल्म रही जिसमें उन्होंने संगीत दिया और बड़ा ही खूबसूरत सा गीत, बिल्कुल उनके संगीत के जैसा ही। चलिए ये अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है चमनपुरा से, जहारा आहिद फातिमा और आसिफ पटवा का। इसी के साथ हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है धर्मचंद, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नमिषा, योगेश जी, आकाश, शिवानी, वैशाली, सौरभ और समस्त गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजनगर, राजसमंद से बहुत शुक्रिया, आपने इन गीतों को पसंद किया। इसी के साथ हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी और सीता और गीता नथाना पंजाब के श्रोता हैं। ये हैं कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिय कुमावत, रजत कुमावत और नन्हा टप्पू हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसी के साथ सुशील, अनीता, त्रिवेदी, गोकुल विलेज, उदयपुर के श्रोता लावा फिल्म के गीत को पसंद किया। और इसी के साथ अनीता और गोकुल विलेज उदयपुर के हमारे श्रोता हैं जिन्होंने सांच को आज नहीं फिल्म के गीत को पसंद किया। ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है प्यार भरे नमस्कार के साथ धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, कमल सिंह और विमल सिंह और कृष्ण सिंह का बहुत शुक्रिया। अगला जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ये लिखते हैं आदर्श नगर मालूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा का बहुत शुक्रिया। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है ये है रामचंद्र पवार, तुलसी राम दैया।

डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और मित्रगण आज संस्थान उदयपुर के श्रोता हैं। इसी के साथ ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है। उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, किरण ललित जी, अजय भावना, हेमलता विनायक जी, यशस्वी सिद्धि, निष्ठा प्रतिष्ठा और हमारे साथ हैं सेक्टर 7 से चामुंडा माता मंदिर से शांता देवी कुमावत, मनोज कुमावत और सुनील कुमावत। लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम, ओके, लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम जो है आप शुक्रवार को सुना करते हैं। अभी तराने हमारे व्हाट्सएप आपके कार्यक्रम है जिसमें आप गीत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलाम के साथ हिना, अर्श, पिंकी, असरार, भाविका और पूरा सलोदा परिवार सादर नमन के साथ उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। ज़िला सहारनपुर गांव मजरा भोजवाड़ा से नसीम अंसारी, प्रकाश, अजय, सभी दोस्त, बहुत शुक्रिया। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, जयपुर से राजेंद्र अरुण वैद, मुंबई से विनोद रंजना जी राजावत, हरिगढ़ से मनोज मनीषा जैन, संभाजी नगर से संजय सपना जैन और उदयपुर से राजकुमार रेणु जैन, बहुत शुक्रिया। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, इन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप किए हैं, तो चलिए हम नाम शामिल कर लेते हैं। सेक्टर 5 से कन्हैया लाल जी के और साथ ही डॉक्टर चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा, मिनिएचर आर्टिस्ट, ओके, धोली बावड़ी से रामेश्वर जी कुमावत, साथी गोविंद जी और इसके साथ डॉक्टर इकबाल शका साहब जी और गौतम प्रकाश गांधी, मंजू जी, रिद्धांश गांधी, केशव नगर उदयपुर के श्रोता हैं। साथ ही सुरेश जी मेघवाल भी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मार्ग श्रीनाथ कॉलेज ड्राइविंग, ऐसा इन्होंने लिखा है। कालका माता रोड, धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार चित्तौड़ा, मनीष कुमार चित्तौड़ा, डॉक्टर इकबाल शका साहब जी भी इस गीत को पसंद कर रहे हैं। गौतम प्रकाश गांधी, मंजू गांधी, रिद्धांश गांधी, केशव नगर उदयपुर के श्रोता हैं। कालका माता रोड से धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार चित्तौड़ा, मनीष कुमार चित्तौड़ा, ये सब नाम हमने शामिल कर लिए हैं। शैलेंद्र पालीवाल, कालू जी मिस्त्री जी, हितेश जी मेघवाल और सभी इस गीतों को इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये जो अगला व्हाट्सअप हम तक पहुँचा है वो है छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई, फूल वाले, दुखना सदफ, जूही जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद फूलवाले, बहुत शुक्रिया। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, अंबिका नगर हिरण नगरी सेक्टर 5 के श्रोता हैं। प्रकाश चंद्र आमेटा, इंदिरा देवी आमेटा, शैलेंद्र बाबू आमेटा, सुरुचि आमेटा, नेहा आमेटा, चेरी खिया, लिली आमेटा, समस्त आमेटा परिवार, ये जो व्हाट्सएप पहुंचा है। भरत जायसवाल सोनी गलासिया गांव मांडवा डूंगरपुर राजस्थान के श्रोता हैं, जिन्हें निश्चय फिल्म का गीत पसंद आया। उदयपुर हिरणमगरी सेक्टर 5 शांति नगर से घनश्याम लाल बडारिया, नानी बडारिया, नंदनी पल्लवी, कुसुम और बाबू भाई का, इसी के साथ निश्चय फिल्म के लिए हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है। वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपाल वाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री, वारियों की घाटी से गुनगुन, और ये व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है। हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरनी, कोलकाता पश्चिमी बंगाल के श्रोता हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप हैं उदयपुर से, सारमा से कैलाशनाथ, निश्चय फिल्म के लिए, इसी के साथ फिल्म निश्चय के लिए विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, पूनम व्यास, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर के श्रोता हैं। इसी के साथ निश्चय फिल्म के लिए नीरज, ध्रुवेश, प्रेम शंकर, हार्दिक, हारोल कॉलोनी फतेहपुरा उदयपुर के श्रोता हैं। और ये व्हाट्सएप हम तक पहुँचा है प्रकाश खनौजिया, मलय खनौजिया, ऋषि खनौजिया, अपोजिट आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है बोरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर, ताहिर लड्डू, सिराज और हबीब का, ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है वो है उदयपुर धानमंडी से परमानंद कुमावत, मंजू कुमावत, विकास, मोनिका और लक्ष्य कुमावत, रेक सिटी रेडियो श्रोता के सभी सदस्य, बेंगलोर से निकलेश, दीपिका व रिधान कुमावत, बेंगलोर से वर्षा, सुरेंद्र और लावंड्या, बड़ी ही साफ राइटिंग में आपने ये जो व्हाट्सएप हमें भेजे हैं। विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशिता, भवन वशिता, गौतम वशिता और राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धोली बावड़ी उदयपुर के श्रोता है। लावा फिल्म का गीत उन्होंने पसंद किया था। चंदन का पालना के लिए हम तक व्हाट्सएप पहुंचा था। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, अभी भी कुछ व्हाट्सएप है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम का आखिरी गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप बिल्कुल न कीजिएगा उदयपुर, कुछ नाम और हैं जो हम शामिल करेंगे। ये जो गीत है ये दिलवाले दुल्हनिया फिल्म से है। आदित्य चोपड़ा जी का आज बर्थडे है, तो एक गीत इस कार्यक्रम में उनका हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन इस गीत के लिए आप व्हाट्सएप बिल्कुल न कीजिएगा।

चलिए, तो आपका प्यार भी व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारा हम तक मिला। चांदपोल भिंडर की हवेली से गोपाल कुमावत, कैलाश कुमावत, हेमंत, सरोज, गौरव, भावी, लवी, पूरा कुमावत परिवार हमें व्हाट्सएप कर रहा है। इसी के साथ हम तक व्हाट्सएप पहुंचा है सुरेंद्र सोलंकी, भावना, प्रदीप और हर्ष, रानू, पार्थ और समस्त सोलंकी परिवार सेक्टर 11 से। अब अगर व्हाट्सएप करते हैं तो शामिल बिल्कुल नहीं हो पाएगा उदयपुर। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, अशरफ खान, रईस खातून, मंजू निम्मी 80 फीट रोड से, नजीब खान, सहिबा खानम, शीबा और शैला का, तीजका चौक से राजकमल खंडेलवा, शैलेंद्र खंडेलवाल, इंदर लाल, दीपक और साथ ही मल्लातलाई से फैयाज हुसैन, रसिया, फरीदा बानो, मोहम्मद शैफ और रुबीना का, साथ ही जगत सिंह चौहान, सहिवालों की हवेली से सविता चौहान, मोना और धीरज चौहान, कुतुबपुरा उदयपुर से अशरफ खान, सईसा खातून, बहुत सारे नाम है उदयपुर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये जो व्हाट्सएप हम तक पहुंचा है, कौशल्या सोहल का, बालकृष्ण सोहल का, पूरा सोहल का परिवार है। माफ़ी चाहेंगे कि बहुत सारे नाम हैं जो हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल हम सभी अब आप सभी को लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहाँ से सुनिएगा आप हिंदी में समाचार। आज का ये प्रोग्राम था तराने हमारे, व्हाट्सएप आपके, आप सभी के बहुत सारे व्हाट्सएप का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, रश्मित को नमस्कार।

0: జాగృతి శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं. श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की.
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरूआती पहचान कार्यक्रम की शुरूआत की है. श्री

नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 101.9 MHz पर श्री आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र FM रेडियो लेक सिटी। इस समय दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। आइए जुड़ते हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से। विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रमों में सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

दोस्तों, आज ये सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषाएं उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: अरे पुरुआ के झोंकवा में आई

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाज़ा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ।

मैं आपको कोई ख़त लिखूं जिसे पा के तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफ़र तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े, तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना, ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे, तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको ख़त लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र के हम सफ़र साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है। जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है, प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो ज़रूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी, बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफ़र में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफ़र प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूँ और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूँ, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बना कर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूँ और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफ़र में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई ख़ास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हों तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठ कर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं।

चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी

के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी और सबसे ज़्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज़्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफ़र की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफ़र के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुनें पुरानी मीठी यादों को ताज़ा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्म आया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आर डी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी, और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप

को इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज़्यादा आपको ठंडक देती? ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंचिए, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहाँ की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊँ तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूँ। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाज़ा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक, हाँ, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफ़र हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह, सचमुच बहुत तेज़ गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं।

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने के सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सकें, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काट कर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताज़ा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की आवाज़ें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपके लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं, सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुँचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफ़र यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।
1: बच्चे

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता, और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है, और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार

0: नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time...
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है।

0: आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब, मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक

0: पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड

0: चीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग,

जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ता का।

0: काशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे, और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी, और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भी देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
1: जी।
2: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो
1: और
2: आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं, तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: फोबिया पता नहीं, हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें अपना बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ, किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता, इनकी सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी

0: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50, आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए? चाय
1: चाय चाहिए।
0: चाहिए। चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीज होती है, वो चाय
0: चाय
1: होती है।
0: होती है।
1: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो
0: तो भी
1: आपका
0: चाय
1: साथी अगर
0: होगी।
1: चाय का प्याला है तो बस, और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो
0: चलती
1: अपना
0: रहती है।
1: आलम बांध देती हैं। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात भी
0: इसके बारे में
1: होगी।
0: बात करेंगे, और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी, और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोग ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक़ रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुनपण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी

0: विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं, और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: से
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, अब चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े
1: हाँ
0: अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: अरे
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय, उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना, वो भी बहुत हैं। जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरग से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा
0: और पौराणिक
1: बहुत
0: कथाएं हैं ना, वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा
1: बिल्कुल।
0: कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट

0: में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है, बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर

0: माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर, तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ होगा, ये तो हम कहेंगे।
1: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा?
0: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर

0: ऐसा कैसे होगा?
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।
2: ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका,
4: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
7: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है।

0: तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई, चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी की कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती
1: चाय
0: है।
1: के
0: एक
1: प्याले भी
0: कप
1: करवा लिए
0: एक
1: जाते
0: कप
1: हैं।
0: चाय मिल जाने पे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: ओहो,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात है
1: है,
0: भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा
0: हाँ
1: प्यारा है
0: सच में।
1: इनका।
0: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूंट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती
0: हमारे श्रोता
1: हैं।
0: साथी लिखते हैं कि हर घुटने घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह,
0: आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी, ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और
1: बिल्कुल।
0: बताओ कौन कौन
1: और
0: से
1: बहुत
0: फोबिया
1: से
0: होते
1: फोबिया
0: हैं।
1: होते हैं, जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है ना,
0: हाँ
1: ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है
0: जी,
1: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है
1: हाँ,
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपेनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भाई देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है, तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते ही, अंधेरा होते ही लगता है डर।
0: तो चलिए

0: अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों को, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा

0: चाबी हो रही थी,
1: बिल्कुल
0: बस ये
1: जाना
0: शुरू
1: है,
0: हो,
1: शुरू होने वाला है।
0: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा
1: बिल्कुल
0: बनेंगे
1: पहुंचिए
0: हमारे।
1: फटाफट।
0: और हम बात कर रहे थे
1: आंखों
0: की।
1: की। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
1: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
0: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत।
1: चलिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओं, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें अच्छा। सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटर सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में हैं?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपन से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करिए, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चंदना में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोले दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरुपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम, बहुत गर्मी है इधर। आजकल तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम। कुछ प्रोग्राम
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सब अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहां के अगर हम पोशाकों

0: के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम, संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुंचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना।

0: हम बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, चलता रहते हैं।
1: जी जी जी हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
0: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
1: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
0: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफ होता है।
1: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
0: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मन चाहेगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
1: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
0: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर और घर पे भी रहता है,
1: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर

0: निकलते हैं और जो उपाय होते हैं वो करते हैं, भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं और हमको अभ्यास भी है, राजस्थान के लोग हैं हम तो गर्मी का अभ्यास है।
1: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
1: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
0: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
1: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
0: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है
1: जी,
0: धर्मेंद्र हेमामालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला।
1: गुजरात की जटिल कला है, जटिल कला है जो सो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई के दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।

0: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
1: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
0: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
1: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है जो आप बनारसी काम बता रहे हैं तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
0: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादिर जी ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम

0: कपड़ा है ना वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि कादिर जी ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
0: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
1: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
0: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी अपनी पसंद का गीत।
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका है लता मंगेशकर की आवाज में है ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: और सब्जी भी लगा हुआ है।
1: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
0: हाँ जी अच्छी है।
1: अच्छा तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
1: अच्छा अच्छा कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
0: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
1: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल हाँ आना चाहिए, है ना?
0: हाँ जी सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है, कहीं से भी हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरवाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
1: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
0: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
1: शाम को
0: माला कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
0: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
1: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम जी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: जी, आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी। मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी।
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार?
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मतवाली चाल।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैम नमस्ते
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी। मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल हैं आपके, क्या करते हैं
1: जी। मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम जी। मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबे, ग्राम तामनाकर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हम दे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वही पिछले साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, कार्यक्रम सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोशी बाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोशी बाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले डुले।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा, और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर, एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई, दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें, हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने।

0: देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: FMN 101.9 MHz पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के आकाशवाणी केंद्र उदयपुर से बोल रहे हैं और शाम के 5 बजे आइए सुनवाते हैं युवा दिलों का अजीज कार्यक्रम युवाणी।
2: दोस्तों, हम वो जनरेशन है जो सुनती कम है और करके दिखाती ज्यादा है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों आज के इस खास कार्यक्रम युवाणी के लिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नेहल और मेरे साथ है
3: निकिता। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: तो आराम से बैठिए, सांसों की रफ्तार जरा धीमी करिए, क्योंकि अगला आधा घंटा बस आपका है और ये आवाज़ बस आपके साथ है।

0: दोस्तों, नारी है तो कल है, नारी से ही संसार, उसके बिना अधूरा हर सपना हर त्योहार। अब 2047 में बदलेगा ये दौर सारा, हर बेटी लिखेगी खुद अपना इतिहास दोबारा। दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, जो सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज की सच्चाई भी है। इंडिया एट द रेट 2047 और उसमें महिलाओं की भूमिका।
1: यार, सोच के ही कितना अच्छा लगता है। 2047 मतलब आज़ादी के 100 साल। लेकिन सच बताऊं, उस भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी कौन?
0: निकिता, मुझे लगता है महिलाएं, क्योंकि आज की लड़की सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें पूरा भी करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा नेहल। पहले जहां लड़कियों को घर तक सीमित रखा जाता था, आज वही लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या पॉलिटिक्स हो।
0: हाँ, और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे देश की महिलाएं दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, जैसे PV सिंधु, मैरी कॉम और कल्पना चावला।
1: बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बल्कि आज हर छोटी जगह की लड़की भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है।
0: और भारत 2047 में महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव लाएंगी। वो लीडर्स होंगी, वो इनोवेटर्स होंगी और डिसीजन मेकर्स भी।
1: और नेहल, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी एजुकेशन। जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और आज गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिससे लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: पर अभी भी थोड़ा चैलेंज है, जैसे जेंडर इनइक्वलिटी, सेफ्टी इशू, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि आज की लड़की डरती नहीं है, वो अपनी आवाज़ उठाना जानती है।
1: और 2047 तक हम एक ऐसा भारत देखेंगे जहाँ हर लड़की को बराबरी का हक मिलेगा, हर सपना सच होगा।
0: तो दोस्तों, भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी महिलाएं मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी।
1: क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो देश खुद आगे बढ़ जाता है।

0: वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, जब देश को नई सोच की जरूरत थी, तब एक युवा नेता ने कदम आगे बढ़ाया। जब भारत बदलाव के मोड़ पर था, तब एक शख्स ने कहा, भविष्य तकनीक में है।
4: दोस्तों, आज के हमारे शख्सियत है वो नेता जिन्होंने भारत को 21वीं सदी की ओर देखने का नज़रिया दिया, राजीव गांधी।
3: निकिता, तुम्हें पता है राजीव गांधी जी को की सबसे खास बात क्या थी?
4: क्या?
3: वो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे, वो तो एक प्रोफेशनल पायलट थे, अपनी लाइफ में खुश थे।
4: बिल्कुल सही कहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें देश की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, और जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो पूरी ईमानदारी से निभाई।
3: और सबसे खास बात, वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती।
4: उनकी सोच और उनका काम तो काफ़ी लाजवाब था। मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी सोच थी मॉडर्न इंडिया।
3: बिल्कुल, उन्होंने कंप्यूटर और टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा दिया। उस समय लोग कहते थे कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां ख़त्म हो जाएगी,
4: लेकिन उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और आज देखो, IT सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।
3: सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, उन्होंने शिक्षा और युवाओं पर भी ध्यान दिया।
4: हाँ, और पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, उससे गांवों को आवाज़ मिली, लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुँचा।
3: और उनकी बात करें चुनौतियाँ और सच्चाई की, तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ उपलब्धियों से भरी नहीं थी। हाँ, उन्हें कई आलोचनाओं और विवादों का भी सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा। यही एक सच्ची लीडर की पहचान होती है।
4: और 1991, वो साल जब देश ने एक युवा नेता को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उनकी सोच, उनका विज़न आज भी भारत के हर कोने में जिंदा है।
3: दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग भविष्य की दिशा तय करते हैं।
4: तो ये थी बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारत को आधुनिक सोच दी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी दुखद मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया, और उसी दिन को हम आज एक संदेश के रूप में मनाते हैं।

0: एंटी टेररिज्म डे, ताकि हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा सकें।
1: नफरत की आग जब दिलों में जलती है तो मासूम जिंदगियां भी पल में बदलती हैं। अब वक्त है एक आवाज उठाने का, आतंक के खिलाफ कदम बढ़ाने का। दोस्तों, डर एक ऐसा शब्द जो इंसान से उसकी हिम्मत छीन लेता है, और आतंक एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे समाज को घायल कर देती है।
0: नेहल, ये दिन सिर्फ याद नहीं दिलाता बल्कि हमें जिम्मेदारी भी देता है।
1: निकिता, क्या तुम्हें पता है ये दिन क्यों मनाया जाता है?
0: हाँ, 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर।
1: सही कहा, उनकी हत्या एक आतंकी हमले में हुई थी और उसी घटना ने देश को झकझोर दिया।
0: और मकसद की बात करें तो इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ उन्हें याद करना नहीं है बल्कि ये समझना है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना भी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा निकिता, इसकी गहराई से बात करें तो आतंकवाद सिर्फ बम धमाकों या हमलों तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये डर फैलाता है, नफरत बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये इंसानियत को ख़त्म करता है।
0: सोचो, एक पल में कितने परिवार बिखर जाते हैं, कितने सपने अधूरे रह जाते हैं।
1: और सबसे दुख की बात कि ये इसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ये सिर्फ तबाही लाता है।
0: नेहल, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना, वो युवाओं की होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार आतंकवाद की शुरुआत गलत सोच और भड़कावे से होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हम जागरूक रहेंगे, यानी युवा पीढ़ी जागरूक रहेगी, सही और गलत में फर्क समझेगी, तो हम खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं।
1: सही कहा निकिता, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहें, नफरत भरे मैसेज, इनसे दूर रहना भी एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ कदम है। और देश की सुरक्षा सिर्फ सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: और अगर हमें कहीं कुछ संदिग्ध दिखे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: और सबसे ज़रूरी, हमेशा एकता बनाए रखना, क्योंकि आतंकवाद का सबसे बड़ा हथियार है विभाजन।
0: कभी कभी सोचती हूँ, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया होगा उनका दर्द कितना गहरा होगा।
1: हाँ, वो दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
0: इसीलिए हम सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन ये याद रखना होगा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहना है।
1: तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर एक संकल्प लें
0: कि हम नफरत नहीं फैलाएंगे, अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे और हमेशा इंसानियत का साथ देंगे।
1: क्योंकि हम सभी आतंकवाद का विरोध करते हैं और शांति का समर्थन करते हैं। नफरत की आग को अब बुझाना होगा, इंसानियत का दीप फिर जलाना होगा। जो डर फैलाए उसका अंत तय है, अब मिलकर आतंक को मिटाना होगा।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये किसी फिल्म स्टार या बड़े बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने समाज की एक चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। ये कहानी है अदिति गुप्ता की।
5: जी हाँ दोस्तों, हम मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी हमारे समाज में पीरियड यानी महावारी जैसे नेचुरल टॉपिक पर चुप्पी क्यों है?
4: सही कहा है हाल। अदिति गुप्ता ने बचपन से ही इस चुप्पी को महसूस किया। उन्हें भी वही रेस्ट्रिक्शन झेलनी पड़ी, जैसे मंदिर में नहीं जाना, अलग रहना, खुलकर सवाल ना पूछ पाना और सबसे बड़ी बात सही जानकारी की कमी।
5: लेकिन अदिति ने इस चुप्पी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने इसे अपनी ताकत बना दिया। उन्होंने अपने हस्बैंड तुहिन पॉल के साथ मिलकर शुरू किया मेंस्ट्रुपीडिया,
4: एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लड़कियों को पीरियड्स के बारे में आसान, सही और साइंटिफिक जानकारी दी जाती है कॉमिक्स के जरिए, जो इतनी सिंपल है कि छोटी बच्चियां भी बिना डर और शर्म के साथ समझ सकें।
5: लेकिन दोस्तों जब अदिति ने इस सेंसिटिव टॉपिक पर काम शुरू किया तो लोगों ने उनका साथ देने के बजाय सवाल उठाए। कुछ ने मजाक बनाया तो कुछ ने कहा आखिर ये सब क्यों।
4: लेकिन अदिति कभी रुकी नहीं, उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने मिशन को जारी रखा।
5: आज मेंस्ट्रुपीडिया हजारों नहीं लाखों लड़कियों तक पहुंच चुका है।

0: स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, अब लड़कियां इस टॉपिक पर खुलकर बात कर पा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अदिति गुप्ता ने हमें ये सिखाया है कि बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता, कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत भी सोसाइटी को बदल सकती है।
0: और सबसे बड़ी बात, हिम्मत वही है जब आप उस बात के लिए खड़े होते हैं जिस पर दुनिया चुप रहती है।
1: तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई आइडिया है जिससे समाज बेहतर बन सकता है, तो डरिए मत, क्योंकि शायद वही आइडिया किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, आदित्य चोपड़ा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर है। वे यशराज फिल्म्स के चेयरमैन भी है, जो भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। आज ही उनका है जन्मदिन।
1: इनका जन्म 21 मई 1971 को हुआ। उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बनाई 1995 में।
0: और सबसे खास बात यह है कि आदित्य चोपड़ा बहुत ही प्राइवेट व्यक्ति है। वे मीडिया से दूर रहते हैं, कम इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उनका काम ही उनकी पहचान है। उनसे हमें एक बड़ी सीख मिलती है, शोर करने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा काम करना।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। मैं थी रेडियो दोस्त आपकी निहल, और मेरे साथ
0: निकिता।
1: नमस्कार।

युववाणी, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आपने ट्यून किया है 101.9 MHz, यह है FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 5:30 का वक्त और अब हम आप तक पहुंचाएंगे सदाबहार नगमे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल।

0: Akashwadi at 90.
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला

0: आकाशवाणी एट 90।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: हंड्रेड 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है एफएम रेडियो लेक सिटी की इस लोकल विंडो में। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं गर्मा गर्म चाय के प्याले और सदाबहार नगमों के साथ, और आपका साथ दे रही है आज आपकी अपनी आरजे डॉक्टर सीमा, वही जो अपने लिसनर्स की है सबसे बड़ी वाली फैन। चाय के साथ स्पेशल हो ही जाता है, आज टी लवर्स डे है, वर्ल्ड टी लवर्स डे है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे और सोचते हैं कि कुछ ऐसे ही गाने जो चाय से जुड़े हों, चाय के हालांकि चाय को हेल्दी वर्जन पिए जाएं हम ये तो कहेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहेंगे कि तेरी यादों का नशा है मुझे चाय की तरह, तेरी यादों का नशा है मुझे चाय की तरह, शाम होते ही तेरी याद आ जाती है। न करना मेरी चाय पर शक ऐ सनम, न करना मेरी चाय पर शक ऐ सनम, हमने तुमसे शाम की चाय सा इश्क किया है, जिसके न मिलने पर दिन अधूरा सा लगता है। क्यों है ना जी।

कीन है जाएंगे, उनके दिलों का जिक्र किया जाए, उनके दिलों की बात की जाए, तो पहली बात यह है कि इन इंडिया एवरी टाइम इज टी टाइम. जब भी मिलो हम किसी भी वक्त किसी को चाय ऑफर कर सकते हैं, और अगर चाय का ना पूछा जाए तो कह भी दिया जाती है, ये कहावत ये बन चुकी है कि अरे हम उनके घर गए और उन्होंने चाय का भी नहीं पूछा. ये बातें हैं, और चाय तो अब आम जीवन की में ऐसी समा गई है कि कई लोगों को शाम की चाय या सुबह की चाय नसीब न हो तो उनके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, उनकी शाम जो है वो अच्छे से गुलजार नहीं होती. तो चाय का कुछ ऐसा ही है, और ये आप उनसे पूछिए जो गोरे रंग से सांवले रंग के कई दीवाने ज्यादा मिल जाएंगे और दूध से ज्यादा चाय के शौकीन हमें कई ज्यादा मिल जाएंगे. बस ऐसी ही है, चाय की कई कहानियां हैं, चाय पर चर्चा होती है, चाय पर कई बातों के मसले सुलझ जाया करते हैं, और यही वो चाय है जिस पर दोस्ती और गहरी हो जाया करती है, और यही वो चाय है जिस पर बहुत सारे बड़े बड़े मसले देश दुनिया के हल भी हो जाया करते हैं, और उन पर बड़ी बड़ी चर्चाएं भी हो जाया करती हैं, कई बार कई रिश्ते बन जाया करते हैं, और बहुत कुछ हो जाता है इस चाय पर जब चाय पर मिल बैठते हैं दो साथी या और कई सारे. अकेले में भी चाय बड़ा सुकून दे जाती है, तो दो दोस्तों के बीच भी बड़े अच्छे से दिल को लुभा जाती है, अच्छा से वक्त कट जाता है, और कई बार कई पार्टियों की रौनक हो जाती है, और कई बार टी पार्टीज भी हो जाती है. तो चाय के कई रूप हैं, कई रंग हैं. चलिए इसी पर एक गाना है, उसे भी सुनते हैं.

दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसे मिठास कभी नहीं आती दोस्तों। वैसे ही जब शाम हो और एक कप चाय दो दिलों को मिला देती है और एक कप चाय दिन भर की थकन भी मिटा देती है। तो चलिए इसी शाम का जिक्र करते हुए ये गाना

तो चलिए, शाम होते ही चाय की चुस्कियाँ हम सबको याद आती है। तो अब ये कह लें कि चाय जो है भारत में पिया जाने वाला प्रमुख या सर्वाधिक पॉपुलर पेय पदार्थ जो है उनमें से एक आता है, और प्रमुख क्षेत्र जो हैं चाय के उत्पादन के वो आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु हैं। और विश्व भर में देखा जाए तो चाय के प्रमुख उत्पादक देश भारत, चाइना, श्रीलंका, केन्या आते हैं। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र स्तर पर इसे 2020 में इसके शुरुआत की गई थी। विश्व भर में चाय की सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और इसका मुख्य उद्देश्य मनाने का यही है कि इसके जो उत्पादन से जुड़े जो लोग हैं, श्रमिक हैं, चाय उद्योग हैं, उनको संरक्षित करना, उनको उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो चलिए, ये बातें तो हैं ही, और चाय का दिन है तो चाय की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, साथ साथ ये ज़रूर ऐड ऑन करेंगे कि चाय का हेल्दी वर्जन पीजिएगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, है ना जी। तो इसी बात पर एक बात ये भी कि सुबह की चाय में भी वो ताजगी नहीं आती जो सुबह में तेरी एक झलक बाजाने से आती है। वहीं खबर फैली मोहल्ले में तेरे मेरे इश्क के इस कदर कि लोग चाय की चुस्कियों से ज़्यादा हमारा नाम लेने लगे हैं।

चाय के बहाने सुबह होती हैं, शामें होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं और अधिकतर घरों में सुबह की शुरुआत इसी चाय से होती है। और सर्दियों के दिनों में अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों में पकी चाय की सुर्खियाँ लेने में एक अलग ही मज़ा है। कहीं इलायची वाली चाय, कहीं सोठ अदरक वाली चाय, तो कहीं कुछ और कई वैरायटी की चाय है। दूध वाली चाय, कोई सिर्फ लेमन टी पीना पसंद करता है, कोई बिना दूध के ब्लैक टी पीना पसंद करता है, कोई मसाला चाय पीना पसंद करता है और कई सारी जगह तो चाय के ऐसे स्टॉल्स लगे हैं जो स्पेशल अपना टेस्ट डेवलप करके उसे ही लोगों का दीवाना बना देते हैं। और कई बार तो एक ऐसा रेस्टोरेंट भी देखा है मैंने अपनी जिंदगानी में कि जहाँ 101 तरह की चाय के फ्लेवर्स मिलते हैं और टी लवर्स को चाय की चुस्कियों के साथ बहुत कुछ पसंद। कोई स्नैक्स लेना पसंद करता है, कोई मठरी लेना पसंद करता है, कोई बिस्किट लेना पसंद करता है, तो कोई बिना इनमें से किसी के भी प्लेन चाय लेना पसंद करता है, तो किसी किसी को चाय पकौड़ों के साथ भी। ये तो बड़ा मशहूर कॉम्बिनेशन है जो लोग अक्सर ऐसा लिया करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाती हैं। और चाय, ऐसा नहीं कि चाय पर बने गाने इन बात के दिनों सालों में बने हैं, पहले भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी ऐसा एक गाना है, दो घूट चाय भरा, थोड़ा सा सुनते हैं।

0: चाय पर गाने सुनते सुनते बातें और शायरी सुनते सुनते आप सब सोच रहे होंगे कि ये वो गाना क्यों नहीं चला रहे। एक गर्म चाय की प्याली और दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल चाय पर बुलाया है। तो ये दोनों गाने आपको आने वाले टाइम में सुनने वाले हैं। एक खास इंटरव्यू भी इस पर आने वाला है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी 6 बजने को है और हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुनिएगा वहाँ से हिंदी में समाचार और फिर जुड़िएगा हमसे।
1: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित

0: करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह FM रेडियो लेक सिटी शाम के 6:05 हुए हैं। आपका फिर से हम स्वागत करते हैं और इस स्वागत के साथ ही आपको फिर से बधाई देते हैं वर्ल्ड टी लवर्स डे की। और इस खास विषय पर या इस खास दिन पर एक खास इंटरव्यू भी है, खास बातचीत भी है जो आपको सुनवानी है। और ये बातचीत हो रही है युवा चाय

0: श्रोताओं, आज वर्ल्ड टी डे और जिसको हम कहें विश्व चाय दिवस, और इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं दीपक गुप्ता। आप युवा उद्यमी हैं और चाय के व्यवसाय से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आप खुद एक टी लवर भी हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दीपक जी, अगर हम बात करें, आज टी डे है और चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिससे हर भारतीय या विश्व का हर एक इंसान किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, और आप स्वयं इस व्यवसाय में हैं, तो आपका इस व्यवसाय से किस तरह से जुड़ा हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: बिल्कुल गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम जैसे चाय लवर्स ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। चाय का व्यवसाय हमारे लिए केवल व्यापारी नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों का अटूट विश्वास और समर्पण है। मेरे परिवार के द्वारा सन 1980 में मेरे फादर साहब ने इसको व्यापार को शुरू किया था। कोटा से हम लोग प्रॉपर हैं और वहीं से हमारी इस यात्रा को शुरुआत मिली थी। मेरे फादर ने कोटा में चाय का व्यापार शुरू किया, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसके बाद हम उदयपुर आ गए। उदयपुर में हमने अपने व्यापार को जमाया। यहाँ पर हमने हमारा एक ब्रांड भी विकसित किया जिसे लोगों ने खूब सराहा भी। इसी सफ़र को आगे बढ़ते हुए हमने पिछले 10 वर्षों से राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कि चाय का और अन्य सभी व्यापार का सबसे बड़ा हब है हमारे राजस्थान का, हमने वहाँ पर अपना व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित भी किया। और आज जयपुर में हम लोग उच्च गुणवत्ता वाली लूज चाय का काम पूरे राजस्थान में करते हैं। और 4 दशकों का ये अनुभव हम बताते हैं कि बेहतरीन चाय के लिए आसाम, दार्जिलिंग से जो चाय आती है, जो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चाय बिकने वाली होती है, वो यही होती है। और यहाँ हमारी शुरुआत इस तरीके से हुई है।
0: तो दीपक जी, अगर देखा जाए, क्योंकि आप युवा हैं और जब आप इस पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े, लेकिन आज का युवा बहुत नित नई कल्पनाएं करता है, नई नई चीज़ें सोचता है, और आज का ज़माना डिजिटल हो चला है, और हम ये सोचते हैं कि इस तरह का हम एक ब्रांड डेवलप करेंगे या किसी अलग बिजनेस में, या क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आपने ये जो अपना पारंपरिक चाय का व्यवसाय है, इस चाय से आपका विशेष लगाव था, इस वजह से चुनाव किया, या फिर ये पारिवारिक बिजनेस था इसीलिए आपके पास कोई ऑप्शन, आपने दूसरे नहीं देखे?
1: देखिए, ऐसा तो नहीं था कि मैं व्यवसाय में आना चाहता था शुरुआती दौर में तो, लेकिन हमारे फादर साहब ने बड़ी मेहनत करके इस ब्रांड को बनाया, अपने व्यापार को और चाय के सारी समझ को रखते हुए उन्होंने हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सबके सामने रखी। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि घर में से किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो व्यापार में होना ही चाहिए, तो मैंने चूज़ किया अपने फादर को। उनके पीछे पीछे उन्हीं के राहों में मैं चलता गया, उनसे बहुत कुछ सीखता गया, और चाय का व्यापार में मेरी शुरुआत उन्हीं के द्वारा ही हुई। मेरे को वही सबसे बड़े मेरे इसमें सिखाने वाले हैं, वही गुरु हैं, और आज हम चाय का पूरा व्यापार कर रहे हैं।
0: दीपक जी, अगर बात की जाए कि व्यवसाय से हटकर अगर जब हम सिर्फ चाय की बात करते हैं, तो चाय सिर्फ एक, मतलब सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं है, मिलने जुलने का जरिया है। और जब हम कहते हैं कि जब घर में कोई, घर पे या भारतीय समाज के अंदर जो एक चाय, एक कप चाय की जो हम जिसको मनुहार कहते हैं, एक चाय के लिए जब हम आग्रह करते हैं, तो ये एक अपनत्व का प्रतीक भी माना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग सब मेवाड़ से हैं, तो मेवाड़ी में तो केवल चाय को सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं मान सकते। चाय इज़ लाइक अपनापन है, आत्मत्या का प्रतीक है। कोई घर आ जाए और हम उसको सिर्फ प्यार से ये बोलते हैं कि चाय पियो सा, तो वो हमारी मनवार उस चाय के प्रति ऐसी होती है कि एक बार मान सम्मान के लिए भी सामने वाला चाय पी के जाना पसंद करता है।
0: और अगर बात की जाए, क्योंकि अभी का जो कल्चर चल रहा है, जब भी कभी डिजिटल युग में हम फ़ोन, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, और इन सब को छोड़ के जब दोस्तों को, आप अपने दोस्तों या अपने पारिवारिक कोई मित्र हैं उनके साथ जब हम बैठते करते हैं, तो उसे भी एक नाम दे दिया गया है, चाय पे चर्चा करेंगे, कहाँ मिलने का है, तो इस पर आपका क्या कहना है?
1: देखिए, चाय पर चर्चा, तो चाय तो ऐसी हो गई कि 4 लोग बैठकर जब खुलकर बात करते हैं तो सिर्फ चाय पे ही हो पाती है। और मेवाड़ में चौपाल, बाजार या दुकान पर चाय के साथ समाज, राजनीति, खेती, हर विषय पर चर्चा होती है।

0: और चाय पर चर्चा करने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बातें खुल करके उस पटल पे रख सकते हो, सामने वाले से बात कर सकते हो। अन्यथा आप देखते हैं कि आजकल सभी जन सिर्फ अपने अपने फ़ोन में रहते हैं, अपने अपने फ़ोन को देखते हैं, कोई चर्चा हो नहीं पाती है। तो चाय एक विशेष रूप से एक चर्चा का विषय हो गया कि हाँ हम चाय पीते हैं, इसका मतलब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग बातें करने बैठे हैं। उस समय पे कोई अपने फ़ोन को नहीं देखता कि कोई मुझे मैसेज देखना है या कुछ यूज़ करना है फ़ोन को, ऐसा करके।
1: हम भी अपने चाय पर इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
0: जी जरूर।

0: श्रोताओं, आज ये विश्व चाय दिवस और इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम मौजूद हैं युवा उद्यमी दीपक गुप्ता। और ब्रेक में जाने से पहले हम इन पे चाय, चाय के व्यवसाय और चाय पे चर्चा से जुड़ी बातें कर रहे थे। तो दीपक जी, अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक व्यवसायी हैं और साथ ही साथ जब हम चाय बिजनेस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर बिजनेस से इतर जब आप लोगों से बिजनेस मीटिंग करते हैं या अपने लोगों से जुड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाय लोगों को आपस में किस तरह से जुड़ने का एक माध्यम बन चुकी है, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
1: देखिए, बिल्कुल सही है कि कहीं रिश्ते, कहीं दोस्ती, कहीं व्यापार, कहीं व्यवहार, कहीं परिवार की चाय से ही शुरुआत होती है। एक कप चाय, मानिए कि एक आपस में जोड़ने का ही कार्यक्रम है, मतलब लोग इनसे जुड़ते हैं। यहाँ लोगों के काम के बीच में अगर बैठे हैं और हम लोग को जैसे भी कोई ऑफर करेगा, यार आप एक कप चाय ले लीजिए, तो हमारी प्रायोरिटी एकदम से चेंज हो जाती है। हम यही बोलते हैं, चलिए यार एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
0: और अगर, क्योंकि आपने परिवार और रिश्तेदारी और नातेदारी, दोस्तों की बात की, लेकिन आपको कैसे लगता है कि आज के समय में ये चाय हमारे रिश्तों को मजबूत करने में किस तरह से एक माध्यम का कार्य कर रही है?
1: देखिए, चाय एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ हम लोग आपस में नहीं बैठते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते हैं, तो चाय, मैं तो कहता हूँ कि चाय को एक ऐसा कर दीजिए कि परिवार के साथ बैठकर आप चाय पे बैठिए, दिन भर की बातें कीजिए, हंसी मजाक करिए, यही आपका सबसे बड़ा अपनापन निकल के आएगा। यहाँ पर चर्चा होगी और आपको सुझाव भी मिलेंगे, पूरी दिन भर की जो बात हुई तो आपको उस पर प्रॉपर तरीके से जवाब भी मिलेंगे।
0: अगर हम चाय बिजनेस की बात करें तो जो आपने कहा कि 4 दशक पूर्व जब आपके परिवार ने 1980 के आसपास ये बिजनेस शुरू किया और आज भी ये चाय के बिजनेस में आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि समय के साथ चाय पीने का कल्चर, चाय का व्यवसाय और इन हैबिट्स में कितना बदलाव आया, और ख़ास तौर से गांव और शहरों का जो कल्चर है चाय का, क्योंकि गांव में अपने घर के आंगन में बैठ के आपको बड़े मेहमान नवाजी के साथ चाय परोसी जाती है, वहीं शहरों में हम गली नुक्कड़ कहीं भी जाएं वहां पर हमें चाय की टपरी दिखी जाती है, तो ये जो टी कल्चर है इसको आप किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपका कहना ये हो गया कि भाई चाय शहर में कैसे पी जाती है और गाँव में, ग्रामीण में कैसे पी जाती है। देखिए, गाँव में तो चाय का पीने का बड़ा अलग ही मज़ा है। गाँव में चाय पीने का मज़ा ये है कि एक तो मिट्टी के कुल्हड़ में, मैक्सिमम जगह मैं जाता हूँ, जैसे मैं गोगुन डायरी में जाता हूँ, अपना खमनोर की तरफ जाता हूँ, नाथद्वारा की तरफ जाता हूँ, तो आपने देखा होगा कुल्हड़ में वहाँ पर चाय सर्व की जाती है, उसका कड़कपन, स्वाद, एक अलग ही टेस्ट वहाँ पे निकल के आता है। मिट्टी की खुशबू से हमारे को उसकी बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई मिट्टी को हम लोग छू पा रहे हैं। दूसरा, आज शहर में तो क्या हो गया, देखिए मैं अगर आप चीनी के कप में और कांच के ग्लास में चाय पीते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ शहर में, हम लोग क्या होता है, डिस्पोजल, प्लास्टिक डिस्पोजल में चाय पीना, चाय लोग ज़्यादा सर्व करते हैं, ये थोड़ा सा घातक है, मतलब शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए बोलता हूँ कि भाई वहाँ पे चाय पीने का अंदाज कुछ अलग है, वहाँ पर चौपालों में, पीच में बैठना, पेड़ों के नीचे छाया में बैठना और चाय की चुस्की लेना, और शहर में ये हो गया कि हम हमारी थकान उतारने के लिए कहीं चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं, यार दोस्तों के साथ कहीं मिले हैं तो साइड में कहीं खड़े हो गए, हम लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। तो फ़र्क तो सिर्फ इतना सा ही है कि वहाँ पर गाँव की मिट्टी को छूने का मिलता है अवसर, और यहाँ पर हम लोग डिस्पोजल का यूज़ कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए।
0: और अगर देखा जाए भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, इसमें आजकल कैफे कल्चर बड़ा हो चला है, जिसको हम टपरी कह रहे हैं, सोशलाइजिंग करने का एक माध्यम बन चुका है टपरी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस जगह हम बीच रास्ते में रुक के कहीं जो ये चाय पी रहे हैं, ये कितनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना सुकून देने वाला है?
1: देखिए, उदयपुर तो अब क्या है, जैसे हमारा जो शहर है इतना सुंदर, इतना प्यारा शहर है, आज हम लोग भी जब कोटा से आए तो यहाँ आके बस गए, मतलब ये मानिए आप, तो उदयपुर तो पर्यटन स्थल ही हो गई, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि आजकल कैफेज़ वगैरह ऐसा होना बड़ा कल्चर हो चुका है उन लोगों का, लेकिन लोग आनंद लेते हैं, आज घर से निकल के जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो चाय पीने का जो एक आनंद होता है कि ठीक है।

0: पिछुला के घाट पे जाकर बैठेंगे या फतेह सागर की पाल पे जाके बैठेंगे, तो एक बड़ा उनको आनंद उसमें मिलता है, बातचीत करने का भी आनंद मिलता है। तो मैं तो सिर्फ इसमें आपको यही कहूँगा कि चाय एक ऐसा विषय है जिसके लिए जगह और कोई व्यक्ति विशेष को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बैठ जाएंगे वहीं अपनी एक माहौल बन जाएगा आपका चाय के साथ में।
1: और व्यक्तिगत रूप से आप कौन सी चाय ज़्यादा पसंद करते हैं? सुबह नींद जगाने वाली एनर्जेटिक चाय या शाम को सुकून देने वाली चाय?
0: देखिए, आपने गलत क्वेश्चन कर लिया मेरे से। मैं तो चाय का दीवाना हूँ। मेरी तो शुरुआत भी ब्लैक टी से ही होती है। सुबह की चाय से शुरुआत होती है। उसके बाद जब हम अपने कामकाज के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे व्यापारियों से मिलते हैं, हमारे फैक्ट्री वर्कर से मिलते हैं, जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले चाय। आओ सेठ जी, चाय पीते हैं। आओ भैया, चाय पीते हैं। तो मेरी चाय की तो ऐसी है कि मेरी 4-5-6 कप चाय हो ही जाती है। हाँ, वापस फिर ये होता है कि शाम को जब घर आते हैं तो थोड़ा सा फिर रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि एक आधी कप चाय और ले लीजिए, फिर अपनी आगे की तैयारी करें।
1: चाय पे बातें और भी जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
0: जी

0: श्रोताओं, आज विश्व चाय दिवस और विश्व चाय दिवस पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं युवा उद्यमी दीपक गुप्ता। तो दीपक जी, अगर हम बात करें, क्योंकि चाय के व्यवसाय के साथ साथ चाय के आप टी लवर भी हैं, साथ ही साथ आप चाय के बिजनेस को बड़े नज़दीक से देखते हैं, लेकिन क्या आपको सच में लगता है, क्योंकि आपने पर्यटन नगरी की भी बात की कि यहाँ हम काफ़ी टूरिस्ट है और हमारे चाय का कल्चर भी काफ़ी यहाँ रिच है, लेकिन जब हम बात करते हैं मौसम की, कई बार देखते हैं जब भी हल्का सा मौसम में बदलाव आता है, बारिश की बूंदें गिरती है, तो चाय के साथ पकोड़े और ये कॉम्बिनेशन बड़ा पॉपुलर हो जाता है। फतेह सागर की पाल हो, चाहे घर की बालकनी हो, तो आपको क्या लगता है कि इस मौसम के अनुसार चाय का जो ये आनंद है, मिजाज को कितना बदल देता है?
1: चाय अपने आप एक बड़ा मिजाजी पेय पदार्थ है। अगर आपने मौसम से रिलेटेड इस बात को कहा है तो मैं आपको बोलूं, जैसे बारिश का, जैसे आपने मौसम के बारे में चर्चा की, जैसे ही बारिश होती है तो हम क्या करते हैं साहब कि कड़क चाय बनाना और आदेश देते हैं कि उसके अंदर हल्की सी दालचीनी डाल देना, थोड़ा सा काली मिर्ची डाल देना, थोड़ा सा उसके अंदर लौंग डाल देना, तो गले को भी राहत देती है और एक अलग ही टेस्ट देती है। फिर जैसे ही हम बढ़ जाते हैं आगे सर्दियों की तरफ में, चाय वही की वही रहती है, फिर हम उसमें टेस्ट चेंज करते हैं कि जायफल डाल देना, थोड़ी सी इसमें जावंत्री डाल देना, कुछ लोग सूट पाउडर भी उसमें यूज़ करते हैं चाय में,
0: और अदरक तो है ही,
1: अदरक तो ऑल ओवर है, मतलब वो बारिश से शुरू होगा तो चलेगा ही चलेगा, अदरक तो नेसेसरी चीज़ हो गई। मसालों से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये मतलब एक चाय के फ्लेवर को बदलती जाएगी। अब जैसे ही आप बात करते हैं गर्मी आ गई साहब, चाय बंद कर देंगे, चाय नहीं पियेंगे, लेकिन मैं एज ए चाय लेवर मैं बोलता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे साहब, हम बोलते हैं चाय बनाओ, इसमें हरी इलायची डालो आप, क्या अलग ही फ्लेवर निकल के आ जाता है, चाय को भी टेस्ट देता है, और सौफ़, बहुत से लोग सौफ़ भी यूज़ करते हैं। और जनरली सर्दी की चाय में मैं एक चीज़ भूल गया बोलना, लोग शक्कर की जगह गुड़ डालना ज़्यादा पसंद करते हैं, गुड़ की तासीर गर्म होती है और फ्लेवर भी मिल जाता है चाय को। तो हर मौसम चाय पत्ती वही है, बनाने की प्रक्रिया वही है, लेकिन मौसम अनुसार उसमें जो थोड़े थोड़े मसालों के जो चेंजेस हो जाते हैं, पूरे 12 महीने चाय आनंद देने जैसी होती है।
0: और अगर चाय के जो आपने जो बताया कि किस तरह से फ्लेवर बदलते जाते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हो चली है आज के ज़माने में, कि चाय के अलग अलग जो फ्लेवर बनाने के लिए आजकल ग्रीन टी है, हनी टी है, या फिर नॉर्मल चाय है, कुल्हड़ चाय, इस तरह के काफ़ी चाय मिलने लगी है। तो क्योंकि आप जेन्युइनली टी लवर हो, विशेष रूप से कहाँ की चाय इस संदर्भ में ज़्यादा फेमस मानी गई है?
1: देखिए, हमारे यहाँ पर नहीं, पूरे भारत में ही अगर मैं बात करूँ, दार्जिलिंग आसाम चाय सबसे ज़्यादा चलती है, जिसमें कड़कपन ज़्यादा होता है, खुशबू अच्छी होती है, और फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल और आसामी चाय की तरफ जाते हैं, तो वहाँ की लीफों में थोड़ा सा अलग, थोड़ा अलग से थोड़ा सा आपको टेस्ट मिलेगा, जहाँ पे एक अरोमा आपको अलग से निकल के आता है। तो ये तो होती है जिसको हम सीटीसी चाय बोलते हैं हमारी वाली लैंग्वेज में,

के अंदर दानों की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कहीं पे बड़ा दाना होता है अगर आपने देखा हो, कहीं बारीक चाय पत्ती होती है। बारीक चाय पत्ती जो होती है वो जनरली टपरी और रेस्टोरेंट यूज़ के लिए होती है, जहाँ पे वो एकदम से कड़कपन भी निकल के आती है, टेस्ट भी रहती है। घर में यूज़ होने के लिए हम लोग मीडियम दाना जो चाय यूज़ करते हैं, और ये जो होते हैं वही हमारी छलनी से चाय नीचे ना गिरे इसलिए मोटा दाना उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो चाय है जनरली जो हम लोग पीते हैं, मैं सिर्फ नॉर्मल चाय की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग दार्जिलिंग, आसाम, सिलीगुड़ी ये चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही आपने बोला कि अलग फ्लेवर की जो चाय आती है, हर्बल टी हो गई।

0: सेल्सियस तक के बीच में तापमान जो मेंटेन रहता है वहाँ पे चाय पत्ती, और वहाँ होती है जहाँ पर बारिश का अमूमन पूरा उनको भरपाई पूरी होती रहे पानी की, जिससे उनका पत्तियों का फ्लेवर, पत्तियों का टेस्ट बराबर बना रहे। तो जो साउथ में भी चाय होती है, हमने केरला में भी चाय होती है, तमिलनाडु में भी चाय होती है, तो वहाँ पर जो हर्बल टी और जिस तरीके की चाय हम लोग अलग अलग चेन आने लगी है आजकल चाय की, वो उस फ्लेवर को वो वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं।
1: जाते जाते कार्यक्रम में, क्योंकि आज विश्व चाय दिवस है, तो हमारे जितने भी टी लवर हैं उदयपुर में, आपकी तरह जो भी टी लवर घूम रहा है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है, आमने सामने बैठकर सिर्फ चाय का आनंद लो, सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ, इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और स्क्रीन से भी आपको थोड़ा सा एक ब्रेक मिलेगा। साथ ही चाय जो है वो एक स्वाद नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति को जोड़ने वाला है, हमारे रिश्तों को मजबूत करने वाला है, अपनापन बनाने के लिए भी हमारा एक कप चाय बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाय एक ऐसी चीज़ हो गई सर, इसका एक ही अगर लास्ट वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी संवाद करने के लिए इस परंपरा को अगर आगे बढ़ाना है तो चाय एक ज़रूरत की चीज़ है, और कोई गलत नहीं है जी। कोई अगर आपको कहता है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिनको चीनी की रिक्वायरमेंट कम होती है वो कम डालें, जिनको लगता है कि मुझे मसाले का टेस्ट और चाहिए तो वो थोड़ा सा डालें, लेकिन चाय ऑलवेज गुड।
1: तो आप थे दीपक गुप्ता, चाय व्यवसाय से जुड़े युवा उद्यमी, और आज कार्यक्रम में आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए धन्यवाद।
0: बहुत सारा धन्यवाद गजेंद्र जी।
2: तो चलिए, आपने सुनी युवा चाय उद्यमी दीपक गुप्ता से गजेंद्र सिंह राठौर की एक खास बातचीत वर्ल्ड टी लवर्स डे पर। और इस पर एक बात ये भी कि सांवला रंग है और थोड़ा कड़क मिजाज है तुम्हारा, सुनो तुम पसंद हो मुझे, तुम्हारा चाय जैसा स्वाद है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा। अनजान ऐप से बचें,
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

केसरिया बनाओ थारी बोली प्यारी लागे। और इस गीत जितना सुहावना मनभावन लग रहा था, वहीं इसमें जो वाद्य यंत्रों का जो इस्तेमाल था वो पूरा राजस्थानी के जो असल वाद्य यंत्र है, रावण हत्था, कमायचा, सारंगी, एकतारा, फपंग, चंग, ढोलक, सबका एक जो ध्वनि मिश्रित रूप में आ रही थी वो इसे और भी मनभावन बना रही थी। चलिए अगले लोकगीत की ओर बढ़ते हैं और ये आप तक पहुंच रहा है सिकंदर और असीम की आवाज़ में। और अगले दोनों लोकगीतों की खासियत ये है कि इन लोकगीतों पर बॉलीवुड में लोकगीत जो है गीत भी बन पड़े हैं और बड़े ही पसंद किए गए और बहुत सारे प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं ये वाला लोकगीत, सबसे पहला लाल पीली अखियां और उसके बाद निम्बुड़ा निम्बुड़ा। तो पहले सुनते हैं लाल पीली अखियां।

असीम और सिकंदर की आवाज़ में ये लोकगीत सुने आप। और अब जो दूसरा लोकगीत अब तक पहुंच रहा है जिस पर बॉलीवुड में गाना बना है वो निम्बुड़ा निम्बुड़ा माने काचा काचा निम्बुड़ा लाई दो करके जो गीत काफ़ी पसंद किया गया था ऐश्वर्या राय पर जो है फिल्माया गया था और वो आधारित था इस गीत पर और जो राजस्थानी लोकगीत तो उसका आधार बना था। और उसमें इस वक्त जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो कई लोकगीत गायकों द्वारा इसे गाया गया है लेकिन इस वक्त जो आप तक पहुंच रहा है वो है कोहिनूर लांगा और पार्टी द्वारा गाया हुआ गीत। बड़ा खूबसूरत है, आइए सुनते हैं।

झुमको राजस्थानी लोकगीता रोयो कार्यक्रम अभी खत्म करवा रहे आज्ञा चाहे है अपनी आरजे डॉक्टर सीमा राम राम सर खमा गणी सा फिर मिलेंगे। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के विविध भारती केंद्र आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं और अब हम आपको जोड़ते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से जहां से सुनेगा वहां के प्रसारण और शुरुआत होगी जयमाला से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जयमाला। आज इस सफर में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे वीर जारा फिल्म से, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश। साविद अख्तर ने इसे लिखा था, संजीव कोहली का संगीत था। और अब लीजिए सुनते हैं भारतीय सेना गीत कैलाश खेर की आवाज में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना गीत आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में। लीजिए कारवा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: दादी वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। जयमाला में आगे ये गीत। किशोर कुमार की आवाज, सागर फिल्म से ये गीत। जावेद तक ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में।

लम्हे फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और शिव हरि का संगीत। लीजिए सुनिए चांदनी फिल्म से ये अगली पेशकश। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, शिव हरि का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम जयमाला।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर।

0: दोस्तों इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है?
1: म्यूजिक ही करते रहना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और कुछ ऐसा प्लान नहीं है, ऐसे गोल नहीं है। म्यूजिक से जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रह के जितना कर सकता हूँ उतना करना
0: जी। तो जो भी आपने सोचा है उसके लिए विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
1: थैंक यू सो
0: मच। और यहाँ आने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिकेत जी आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद सीधे तो म्यूजिक की तरफ बढ़े नहीं होंगे?
1: हाँ, तो actually...
0: और जैसे आमतौर पे हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता घर में ये उम्मीद करते हैं कि आपने डिग्री कर ली भाई, अब कोई नौकरी करो या कोई अपना व्यवसाय करो,
1: राइट,
0: है ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
1: हाँ।
0: तो आपके सामने, आपके लिए भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा, आपसे भी उम्मीद की जा रही होगी।
1: हाँ।
0: उस
1: तो
0: उम्र में
1: एक्चुअली हुआ ऐसा था कि इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर में कैंपस प्लेसमेंट होती है,
0: जी,
1: तो तब मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गया था। लेकिन उसका जो ज्वाइनिंग था वो पुश हो गया था, 6 महीने से या आई थिंक 1 साल से पुश हो गया था तब।
0: अच्छा।
1: तो जुलाई में पास आउट हुए और फेब में ज्वाइनिंग आने वाला था, ऐसा कुछ था तभी। तो 6 महीने फ्री था और कॉलेज में एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक में कुछ करना है।
0: अच्छा।
1: लेकिन तब, क्योंकि मैंने तभी सीखना भी शुरू किया था, मतलब काफी 2-3 साल ही हुए थे क्लासिकल म्यूजिक, ऐसे ही आप बजाना नहीं शुरू कर सकते, बहुत कुछ सीखना बाकी था तब। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साउंड इंजीनियरिंग करके एटलीस्ट म्यूजिक में जॉब करता हूँ
0: जी,
1: ताकि मैं म्यूजिक से कनेक्टेड रहूंगा, मुझे पता चलेगा म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो फिर तभी मैंने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स मुंबई में था एक बहुत अच्छा,
0: जी,
1: वहां पर कि मैं कोर्स कर लेता हूँ और जॉब मिल गया है तो अगर, तो इधर अगर एक बार प्लेसमेंट में मिल ही गया है तो फिर से मिल ही जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं
0: अच्छा,
1: ये ट्राई करके देखता हूँ।
0: हाँ,
1: तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग किया और फिर वहां से मुझे एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया
0: अच्छा,
1: उसके बाद। तो फिर मैं वही करता रहा 8 साल तक
0: ये वही था जो आप
1: साइमल्टेनियसली।
0: चाहते थे,
1: हाँ, वो लकीली हो गया, वो
0: म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते थे
1: म्यूजिक
0: और
1: से जुड़ा
0: आपको
1: लेना चाहता था।
0: रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही जॉब मिल गया।
1: हाँ,
0: क्या
1: तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जॉब मिल गया और फिर मेरा काम भी म्यूजिक के रिलेटेड ही था। मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करता था, अलग अलग म्यूजिशियन से मिलता था।
0: हाँ।
1: फिर कुछ सालों के बाद मैं लाइव साउंड भी करने लग गया। तो जो म्यूजिक की जो टेक्निकलिटीज होती है,
0: जी जी
1: जो परफॉर्मेंस की जो टेक्निकलिटीज होती है, उसके
0: जी
1: बारे में भी मुझे काफी कुछ सीखने को वहां से मिल गया। और हाँ, और मजा तो आता ही था क्योंकि आप म्यूजिशियंस के साथ ही हो, म्यूजिक की बातें कर रहे हो, तो इस तरह से।
0: फिर भी आपके पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल तो कभी आया होगा कि एक इंजीनियर के रूप में आप बहुत अच्छी तरह से सेटल हो सकते थे अपने लाइफ में?
1: हाँ, मतलब उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हारा डिसीजन खुद लो
0: अच्छा,
1: ताकि फिर बाद में रिग्रेट हो तो तुम्हारी वजह से हो, तुमको
0: इट्स योर लाइफ।
1: इट्स योर लाइफ
0: अच्छा,
1: कि तो तुम सोच लो क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट तो होगी।
0: जी
1: और
0: जी
1: प्रोफेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से उनको भी बहुत आइडिया नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि हमें कुछ पता नहीं है तो हम तो आप तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे ये फील्ड में
0: हाँ
1: बिल्कुल भी,
0: हाँ
1: तो यू आर ऑन योर ओन, तो आपको अभी
0: और
1: इधर।
0: आप अपने निर्णय पे पक्के थे
1: हाँ, मतलब
0: पूरी तरह से? क्या
1: वो थोड़ा होता है, वो एज में एक स्टुपिडिटी होती है कि अच्छा मैं कर लूंगा, तो फिर आप घुस जाते हो उसमें और फिर
0: नहीं, लेकिन ये एक एक मजबूत जो है निर्णय ले पाना उस उम्र में भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ, मतलब वो एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, वो मेरे लिए निर्णय नहीं था वो एक्चुअली, मैंने सिर्फ सोच लिया कि अच्छा ये करना है और फिर इतना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा नहीं था तब, तो वो
0: उस
1: समहाउ
0: उम्र में इतनी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं
1: राइट।
0: कि किसी एक निर्णय पे टिके रहना भी बड़ा मुश्किल होता है।
1: हाँ, वो है, लेकिन वो हो गया, मतलब समहाउ फिर मैं वो सर्कल में ही घुस गया। फिर उसके बाद म्यूजिशियंस के साथ ही सराउंडेड हो तो आपको स्ट्रगल्स दिख रही है और आपको दिख रहा है कि अच्छा पूरी इंडस्ट्री ये कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही
0: अच्छा।
1: पूरी इंडस्ट्री वैसी है ना। तो
0: जी जी जी
1: जब आप काम करने लगते हो, और एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर आप फेमस हो तो आपको लाइवलीहुड हो रहा है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा पूरी इंडस्ट्री होती है जो सर्वाइव कर रही है
0: हाँ
1: और बहुत काम है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
0: जी
1: आपको सिर्फ यू हैव टू बी विलिंग टू डू द वर्क।
0: जी
1: तो

0: ऐसा होता नहीं है कि अगर आप कि आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है या आप,
1: काम बहुत है,
0: हाँ
1: टास्क
0: काम
1: बहुत है, करने वाले
0: टास्क
1: चाहिए।
0: करने वाले चाहिए, आपको विलिंगनेस भी होना चाहिए
1: जी
0: और आप सीखते रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि आपने एक डिग्री ले ली हो तो आपको, क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क है तो आपको अपने इम्प्रूव करते रहना पड़ता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो एक वो चीज़ है और एक लक का भी है, मतलब मुझको ऐसा भी होता है कि आपको एक अच्छी संगति मिल जाती है और फिर आप उसमें सेट हो जाते हो, तो फिर वो वहां पे उसी तरह से हो गया था एक्चुअली साउंड इंजीनियरिंग में भी, कि उसके बाद एक स्टूडियो में गया, फिर
1: जी
0: वो स्टूडियो के ओनर भी मतलब काफी मतलब मेरी ही एज के थे वो, जस्ट दैट उन्होंने स्कूल के बाद ही सीधा स्टूडियो ही ओपन कर दिया 12th के बाद इंस्टेड ऑफ
1: अच्छा
0: डूइंग द डिग्री। सो ही वॉज अ कंपोजर, उनके साथ काफी सीखा
1: जी
0: काफी,
1: जी
0: तो उस तरह मजा आ रहा था तो फिर कर रहे
1: क्या बात है।
0: थे।
1: और ये उम्र होती है जब बहुत से हमारे दोस्त होते हैं और वो दोस्त भी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं हमें, मगर आपको संगत मिली उन साउंड
0: हाँ
1: रिकॉर्डिंग
0: हाँ हाँ
1: स्टूडियो के
0: मेरे
1: ओनर
0: मेरे
1: की।
0: दोस्त भी एक तो ऐसा है ना कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूं, तो मेरे दोस्त भी ऐसा बहुत लिमिटेड है,
1: अच्छा
0: और मोस्टली मेरे जो दोस्त है वो भी बहुत अलग अलग फील्ड्स में है, ऐसा नहीं है कि कोई सब लोग इंजीनियरिंग ही
1: हाँ
0: कर रहे हैं,
1: हाँ
0: तो फिर वो लोग भी काफी सपोर्टिव ही थे।
1: क्या
0: तो
1: बात। कोई खास दोस्त जिसको बारे में आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद की हो?
0: एक्चुअली मेरा एक दोस्त था अश्विन, है मतलब अभी भी, वो
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: भी है। तो हम दोनों ने एक्चुअली साथ में कोर्स करना शुरू किया,
1: अच्छा
0: बचपन का ही दोस्त है, वो भी मेरे साथ ही बड़ा हुआ है
1: जी
0: कॉलेज
1: जी
0: में, वो भी गिटार प्लेयर था, वो क्लासिकल में नहीं आया, वो रॉक म्यूजिशियन ही था। और फिर उसके बाद तो हम दोनों ने साथ में साउंड इंजीनियरिंग किया, साथ में ही स्टूडियो में काम किया, अभी वो प्रीतम के साथ हेड, वो पूरा उसका साउंड डिपार्टमेंट संभाल रहा है।
1: क्या बात।
0: तो
1: संगीत आपकी सबसे पहली पसंद है, मगर
0: हाँ
1: इसके अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? आपके शौक क्या क्या हैं?
0: मुझे घूमना पसंद है, ट्रैक करना पसंद है,
1: अरे वाह,
0: बाकी आई थिंक बचपन में मैं जो कॉलोनी में रहता था वहां पे अलग अलग स्पोर्ट्स थे, तो स्विमिंग करता था, बैडमिंटन खेलता था, तो वो सब एक स्पोर्ट्स वाला जो एंगल है, तो
1: हाँ
0: अभी भी मैं स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ कभी कभी, वो एक अच्छा लगता है मुझे।
1: जी।
0: अभी रिसेंट एक शौक है जो डिस्क्राइब कैसे करूँ पता नहीं, बट कॉफी कॉफी का एक शौक काफी है आजकल, तो मैं मतलब जो स्पेशलिटी कॉफी है, बीन्स लाओ और फिर उसको ग्राइंड करके आप जो कॉफी बनाते हो
1: अच्छा,
0: तो
1: कॉफी
0: वो
1: बनाने का शौक।
0: कॉफी बनाने का मतलब, आप एक तो इंस्टेंट कॉफी होते हैं जो आप डालते हो, पाउडर होता है उस पर पानी डालते हो और वो घुल जाता है,
1: मर ये कॉफी के बीज लाकर उन्हें
0: काफी कोई
1: भून
0: बीन्स
1: कर
0: लाकर उस, हाँ
1: और उसको पीस करके फिर वो
0: पीस
1: कॉफी
0: करके,
1: बनाई
0: हाँ
1: जाती है।
0: हाँ तो उसकी एक बहुत मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है अब,
1: अच्छा
0: तो वो देख देख के उसका शौक आ गया, तो फिर वो एक बहुत
1: हाँ,
0: बड़ा शौक।
1: कई बार हमारे शौक हमारे काम को प्रेरित करते हैं, उनमें
0: राइट
1: कुछ नयापन लाते हैं। ऐसा
0: हाँ
1: कभी
0: हाँ
1: आपके साथ हुआ है? जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो बेसिकली गिटारिस्ट हैं मगर वो पेंटिंग भी करते हैं,
0: राइट
1: तो गिटार बजाते बजाते उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं तो उसके अनुसार उनका पेंटिंग बन जाता है।
0: राइट राइट राइट राइट
1: कुछ
0: राइट
1: ऐसा आपके साथ हुआ है?
0: नहीं तो आर्ट में तो मैं यूजुअली गिटार ही है, तो ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ है, बट एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की है, जब आप, तो ऐसा लगता है लोगों को कि आर्टिस्ट ऐसे खाली बैठे रहते हैं बहुत बार, या मतलब, और अगर कोई नॉर्मल, अगर आपका कोई 9 to 5 जॉब हो, आपको लगेगा कि अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इतना इतना देर खाली, पूरा दिन खाली है तो कुछ और काम कर ले, बट होता है क्या कि वो जो खाली फेजेस होते हैं जब आप अकेले में होते हो या जब आप चल रहे होते हो, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं चल रहा होता हूँ और नए नए म्यूजिकल आइडियाज आते हैं,
1: अच्छा
0: या मैं कहीं ट्रैक पे जा रहा होता हूँ जब इंस्ट्रूमेंट से दूर होता हूँ,
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: और
0: हाँ
1: आप कहीं घूम रहे हैं तो नेचर से भी आपको
0: नेचर
1: प्रेरणा
0: से भी
1: मिलती है।
0: काफी, हाँ हाँ
1: जी जी
0: हाँ
1: जी
0: तो
1: क्या
0: जब
1: बात।
0: अकेले होते हो और आप, आपके पास कुछ होता नहीं है, फोन नहीं होता है, तो आप कुछ सोच में होते हो, तो उसमें से जो आइडियाज आते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं फिर वापस आके जब आप ट्राई करते हो तो
1: क्या बात, बहुत खूब। अनिकेत जी, क्लासिकल म्यूजिक में कई बार सुगम संगीत की झलक भी सुनने को मिलती है,
0: हाँ हाँ
1: बंदिशें बजाई जाती हैं,
0: राइट
1: तो ऐसा कोई टुकड़ा, कोई छोटा सा पीस जो गजल की तरह हो या किसी सुगम संगीत की तरह हो, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें?
0: आज जाने की जिद ना करूं, बजाओ
1: वाह
0: थोड़ा
1: वाह वाह, स्वागत है।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो और यूं ही धुने सुनाते रहो, मगर किसी भी आयोजन के समय की अपनी सीमा होती है और उसका पालन हमें करना पड़ता है। तो विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से आप जो कुछ भी आगे करने वाले हैं उसके लिए ढेर सी शुभकामनाएं, और यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। अगले सप्ताह हाजिर होंगे किसी और मेहमान के साथ। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा,
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
1: मुझे भी
0: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
1: सुनिए,
0: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
1: पागल खाने को।
0: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुकता खींच के मारा है, सारा भेजा मारा गया। लगता है आप शायर हैं।
1: जी नहीं।
0: तो फिर कवि हैं?
1: जी नहीं।
0: तो फिर आप?
1: जी,
0: फिर
1: मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: किसी से कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
0: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी, डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे।
1: जी?
0: मेरा मतलब है, आप क्या पिएंगे? चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध? निपिल से
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा, तो आप क्या नोश फरमाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: ठीक है ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप?
0: जी, मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे?
1: जी नहीं।
0: बरेली, रांची?
1: जी नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी,
0: होगा।
1: मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती है?
0: मैं तो यहाँ की बात कर रहा था।
1: यहाँ की? मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया।
0: अच्छा ठीक, चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए, यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा, तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है, अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए?
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा? तुम कहते हो तो लो, मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पूछिए।

0: कि मैंने ऐसा क्यों किया?
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जगदेव
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते?
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर 100 की स्पीड से भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है।
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, ये पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब, 100 की स्पीड से भागा।
3: तुमने उसे भागते हुए देखा?
0: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।
3: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
0: अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता, वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
1: डॉक्टर साहब, गुड, वेरी गुड, आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार हैं।
4: थैंक यू।
1: हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।
4: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे।
1: अच्छा?
4: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
1: अम्मा क्या कह रहे हैं आप?
4: अजी मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब पूरी बात तो सुनिए।
1: सुनाइए।
4: हाँ तो मैं कह क्या रहा था,
1: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
4: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है, यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए।
1: अच्छा?
4: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
1: अरे बाप रे।
4: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ, तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया।
1: वाह।
4: फिर उसका पेट दबाया।
1: वाह।
4: फिर उल्टा किया। फिर पेट दबाई।
1: वाह।
4: फिर उल्टा किया। फिर आखिर में उसका गला दबा दिया। और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहां आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
5: राम भरोसे
4: जी,
5: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है?
0: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था। ये क्या हुआ?
5: समझदार नहीं था? फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
0: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
5: तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों
0: साहब? भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
1: गुड, वेरी गुड।
4: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा, उधर के मरीज बम्मा फेंक कर मारते हैं।
1: अच्छा?
4: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
1: क्यों?
4: उधर मरीज काट खाते हैं।
1: अरे बाप रे।
4: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
1: क्यों?
4: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
1: अच्छा?
4: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल कभी मरता नहीं। उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
5: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।

0: तुम फिर आ गए?
1: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
0: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे?
1: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
0: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है? इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, इनकी नाक मोम की है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
1: चक्कू से।
0: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं? आप चुप रहिए
1: जी।
0: हाँ तो राम भरोसे
1: जी सर,
0: तुम मेरी नाक काटोगे
1: जी?
0: पर भाई इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ, फिर ये साहब भी बैठे हैं, इनसे बात भी तो करनी है ना।
1: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं एक घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
0: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
1: अच्छा जाओ। थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा परेड? सलाम, एक दो एक,
2: जान बची जान,
1: एक दो एक,
2: जान बची जान,
1: एक दो एक,
2: जान बची जान।

अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची, लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: सुनहरे रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम चित्रलोक में। मेट्रो इन दिनों इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत।

तेरी बातों में उलझा, ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रोमी और तनिष बागची की आवाज़ों में नीरज राजावत ने इसे लिखा था और म्यूजिक तनिष बागची का था।

ओके जानू, ये था फिल्म का नाम। जॉनिता गांधी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था, ए आर रहमान का संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती से। चित्रलोक के बाकी के नगमे कुछ पलों में।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत कार्यक्रम चित्रलोक में। कपूर एंड सन्स फिल्म का नाम है, अरमान मलिक अमाल मलिक की आवाजें।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में ये गीत राबता फिल्म से। इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत।

फिल्म पंगा से ये गीत शाहिद माल्या और अजीज कौर की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसे लिखा।

0: संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और

जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर

0: हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुडमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिर वही रात है, रात के इस पहर। ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का ये संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

0: यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो सही जगह।

0: निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
0: RBI कहता है,
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।

0: अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats, yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्री।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आजा की रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है। तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां, एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

मेरी पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती हैं, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

ना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना।

0: सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको लेबोरेटरीज, वीको प्रोडक्ट, वीको वशदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बात

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा,
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: FM 101.9 MHz पर हम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के आकाशवाणी केंद्र उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा करें।
5: समाचार सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 20

0: 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।